लाइव टेलीफोन इन प्रोग्राम दोपहर 12 बजे एफएम न्यूज हेडलाइंस और उस तो ठीक बात आड़े प्यारे घर तुहाड़ी लाइफ स्टाइल नू हेल्दी अपडेटेड रखदा होया प्रोग्राम होम स्वीट होम दोपहर 1 बजे मिड डे मेलेडीज और इस प्रोग्राम के दरमियान 1:40 तो 1:50 तक पंजाबी खबरां दोपहर 2 बजे दिलाज शायर है दोपहर 3 बजे ले चलेंगे तुहानू एफएम रेनबो दिल्ली के अंदर सदा हर रोज खास प्रोग्राम सुनते हो दिल्ली के अंदर तो रेडियो डॉक्टर शाम 4 बजे एफएम रेनबो जलंधर केंद्र तो प्रोग्राम हैलो जलंधर युवा दोस्त लेके आएंगे प्रोग्राम युवाणी शाम 5 बजे शाम 6 बजे साडा खास द इवनिंग शो लेके हाजिर होवांगे लव यू जिंदगी प्रोग्राम दरमियान 6:20 तो 6:30 तक प्रादेशिक खबरां ते मुड़ जारी रहेगा लव यू जिंदगी 7 बजे तक शाम 7 बजे ताज़ा खबरां तो जानकारी ले पाऊंगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दे राही और उस तो ठीक बाद फिल्मी दुनिया 8 बजे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस और उस तो ठीक बाद पब्लिक मंच रात 1 बजे फिर तो 9 बजे सुनूंगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस और उस तो बाद प्रोग्राम दिल चाहता है रात 10 बजे सजेगी गजलां दी महफिल शामे गजल च और रात 10:30 साड़ी सभा दा आखिरी प्रोग्राम लेके हाजिर हो जावांगे एक प्यार का नगमा है ये सन साढ़े अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्राम ते उना दा प्रसारण समा ते आओ हुन समा हो गया है भगती संगीत दा प्रोग्राम वंदना

अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवे। परमात्मा दा नाम अमृत दी तरह, जो इंसान भी उस दे नाम ते ध्यान लाउंदा है, उस इंसान दा जीवन स्वर्ग बन जांदा है।

0: बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
1: दुनिया दे विच हुंदा उही है जो परमात्मा ने साडे लिए लिखिया हुंदा है, सोचिया हुंदा है। ते कई वारी परमात्मा ने ये लिखिया हुंदा है कि असी अपने सारे दुख भुल के सिर्फ ते सिर्फ उस परमात्मा दे विच अपना यकीन बनाई रखिए, विश्वास बनाई रखिए। चाहे उस परमात्मा नूं असी अपने माता पिता दे रूप विच देखदे आ, मानदे आ, या फिर असी अपने दोस्त, मित्र, सखा या गुरु दे रूप दे विच स्वीकार कीता होया है। लेकिन जदों भी असी अखां बंद करके अपने मन दे विच उसनूं याद करके ध्यान लगा के किसी भी दुचित्ती दा जवाब मांगदे आ, तां ओह सानूं जरूर जवाब भी दिंदा है, ते साडी मदद दे लई आप भी आउंदा है।

नई सी ठंडी सी प्यारी सी ताजी सी सुबह और है ये एक नया सा सवेरा, सूरज की किरणें और है थोड़ा थोड़ा सा आज हवाओं का बसेरा और मुस्कुराता हुआ आपका ये चेहरा। मुबारक हो आपको ये आज का हसी सवेरा। सो जी नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग ब्लेस्ड पॉजिटिव एंड हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे का ही बहुत बहुत स्वागत कर दिया और इस प्यारी जी शुक्रवार की सवेर कहते हैं कि शुक्र है शुक्रवार है। हाँ जी फाइनली जरा मंडे तो असी भारी जहा सफर शुरू किया सी। लो जी आगाज तो बाद कितने अंजाम तक भी पहुँच गए इस हफ्ते दे नाल ही। देखो फटाफट दिन बीत जाते हैं, समय इदा बीत जाता, पता कितने लगता है, पता लगता है जो घड़ी सामने हो जरा दुख वाला समा होंदा ना वह तो एक पल नहीं बीतता, सुख वाला तो खुशियां वाला जरा समा है ना फटाफट बीत जाता है। इस वजह करके एफ एम रेनबो तुहाड़ा साथ दिंदा है क्योंकि एफ एम रेनबो दे नाल सारे काम छूमंतर हो जाते हैं, है ना। ठीक है मैं जिहड़ी वड्डी जी हाँ कीती है ना, चलो ठीक है इसी हाँ नूं बरकरार रखदे हो और अगे लैके चलते हैं। टाइम हो गया है 7:05 और पूरे 38 सैकेंड, यानी कि टाइम हो गया है मॉर्निंग विश ते कर दित्ती। मॉर्निंग विश तो इलावा का भी कोई टाइम है। हाँ जी टाइम हो गया है जी तुहाडे फेवरेट वाले शो का जिस विच हुंदी है इनफॉर्मेशन ते एंटरटेनमेंट दी डोज और ये जिहड़ा शो है गुड मॉर्निंग जलंधर है जी। सो उठो मुस्कुराओ ते वॉल्यूम अपने रेडियो दी थोड़ी जी फुल करो क्योंकि तुसी सुन रहे हो फिलहाल आकाशवाणी दा एफएम रेनबो ते माइक दे इस पासे फुल ऑन एनर्जी मोड दे विच ट्राई कर रही है एटलीस्ट आर जे पूजा तुहानी बैठी हुई है तुहाडे नाल गल्लां करन दे लई और इस प्रोग्राम दे विच जिस च हुंदी है इनफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट दी फुल ऑन डोज नाल दी नाल गल्लां बातां दा सिलसिला मैं ते कैरी फॉरवर्ड करदी ही हमेशा आ और उम्मीद भी करती हूँ कि तुसी भी मेरे नाल गल्लां करोगे, लेकिन फिलहाल 8:30 बजे तक करूँगी मैं ही तुहाडे नाल गल्लां और 8:30 बजे सुनोगे खबरां। 8:40 तो 9 बजे तक तुसी अड्डी नूं थोड़ा जिहा कष्ट दोगे अपनी नूं क्योंकि नचन टप्पन दे पंजाबी बीट सॉन्ग्स लैके आ जाऊँगी 8:40 to 9 अड्डी टप्पा सैगमेंट्स और सवेरे 9 बजे फिर तो मेरे तो ही सुनूंगी एफ एम न्यूज़ हेडलाइंस और इस तो बाद शुरू करेंगे प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी जिस विच तुसी भी मैनू अपने फीडबैक दे सकते हो, लेकिन ये भी दस सकते हो और कि चीज़ा तुहाडे कोल दसन वाली है शेयर करन वाली है और नंबर तुहानू तो पता ही है, लेकिन एक बार फिर दसूंगी लेकिन 9 बजे तो बाद मतलब 9:02 ते। सो फिलहाल दिमाग च मेरे आ रहा है कि गल्लां बातें आप कर ली शुरू हजे कंप्लीट कीतियां ने हजे तो शुरू कीतियां ने ते इन्हां गल्लां बातां दे सिलसिले नूं आपां अगे लैके चलदे हां सोहणे जिहे गीत दे नाल क्योंकि सवेर दी शुरुआत प्यारी जी सवेर दे नाल होवे आई मीन गाने दे नाल होवे तां फिर उह जिहड़ी खुशनुमा जी सवेर है ना उहदा मज़ा उदों ही बणदा है। की कह रहे हो है ना वड्डी वाली यस, चलो ठीक है ते फिर प्यारी जी सवेर ते प्यारी जी फ्राइडे मॉर्निंग तो इलावा जिहड़ा असीं अज का सफर शुरू करना है गुड मॉर्निंग जलंधर का उस प्यारे जे गीत दे नाल शुरू करते हैं बहुत

में ऐसी ही रंगीली सजीली और अपनी धुन में रहने वाली। और मैनू लगदा कि इह सिर्फ मैं ही नहीं, तुहानू सारयां नू एदां ही होना चाहीदा है, क्योंकि सारा कुछ टाइम दे नाल बदल जांदा है। एवरीथिंग इज टेंपरेरी और टाइम दे नाल ते बदल जांदा है। इवन कि साडी खूबसूरती, जिस ते सानू कई बारी बहुत ज़्यादा माण भी हुंदा है, जो नहीं बदलता ना वो साडा मन है। और मन दे अंदर वो जिहड़ी चंचलता है ना, बच्चियां वाली शरारत करन दा जिहड़ा मन करदा है अंदरों अंदरों, वो कभी भी मरण ना दो, क्योंकि वो जरूरी है उसका जिंदा रहना। अगर वो ठीक ठाक है ना और खुश है, बस बाकी सब कुछ ठीक है। क्योंकि जदों भी जिंदगी दे विच असीं काइंड होना, मतलब थोड़ी नरमी चूज करते हैं, काइंडनेस चूज करते हैं बाकियों के लिए, मैनूं लगता बाद विच आउंदी है। क्यों नहीं असीं पहला खुद दे लई थोड़ी काइंडनेस चूज करिए, अपने नाल भी थोड़ी जी असीं नरमी बरतीए। हर गल ते जदों मन मार लैंदे आ, ते इदां सोचिया कदी, जदों असीं इह कहिंदे आ कि साडे सारिआं दे अंदर परमात्मा दा वास हुंदा है, ते जदों असीं अपना मन मारदे आ किसी चीज़ दे लई, उदो साढ़े अंदर जिहड़ा परमात्मा बैठा है, उसका जिहड़ा अंश है साड़ी आत्मा दे अंदर, उसनों किन्ना क चंगा लगता होएगा। सो मैनू ये लगता कि परसनली जिहड़ी सैक्रीफाइस की भावना है बड़ी साढ़े अंदर होंदी है ना, कईयां दे अंदर अजकल तो चीज़ कितने ना कितने ओके बाय बाय टाटा सी यू कर चुकी है। इमोशंस ते खत्म हो रहे हैं अज के टाइम ते, लेकिन जिन्हां च हैगे ने उन्हां च बड़े ओवरलोडेड ने, उन्हां दे लई इह जिहड़ा मेरा मंत्रा है या फिर सजेशन कह लो, अपना मन ना मारया करो। जो करन दा मन है ना वो कर लिया करो, किते जान दा मन है जाया करो, कुछ खान दा मन है खाया करो, किते अगर किसे ना गल करन दा मन है तो कर लिया करो। ये टाइम बीत जाएगा तो मुड़ के मलाल रह जाएगा। सो जो टाइम है वो होनी है, इसे पल दे विच जियो। और दिल दे विच जो भी अरमान ने इको दम नासी थोड़े थोड़े करके पूरे कर दे रहो। आखिर दिल दे विच जिहड़ा बच्चा है ना साडे छुपया होया, वो असल दे विच उस परमात्मा दी पुकार है। गॉट माई पॉइंट जी। सो गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच मेरे नाल, यानी कि पूजा टोहानी दे नाल, ए सी मेरा अज दा थॉट ऑफ द डे।

दिल दा बच्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बस बच्चे ते अपनी जिद मनवाई लेंदे ने, और मैनू लगदा कि अपने दिल दी अगर कोई जिद है, कोई मन है, तो फिर मतलब कोई गल है मन च, मारना क्यों है, मन लेनी चाहिए ना, मन मारन दी बजाए। सो जदों असी किताबां पढ़दे हां तां बड़ियां सारियां चीज़ां सानू उन्हां किताबां चों ही पता लगदे ने। इस वजह करके कहिंदे ने कि पढ़ना जरूरी है और पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं ते ऐसे एक मैं कह सकती हूँ कि भारतीय हिंदी लेखक ते संपादक पत्रकार भी रहे ने जो जिन्हां नूं पढ़िया है, और उन्हां दा नाम जदों आंदा है तो मैनूं अपने ग्रेजुएशन दा टाइम याद आ जाता है, क्योंकि बहुत सारियां उन्हां दियां लिखियां होईयां मैं मतलब उन्हां दियां किताबां पढ़ियां, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट इलैक्टिव होंदे ने ते कुछ जनरल होंदे ने। सो इलैक्टिव सब्जेक्ट दे विच थोड़ा जिहा ज़्यादा डिटेल दे विच उन्हां चीज़ां नूं दस्या जांदा है। सो इलैक्टिव हिंदी पढ़दे हुए जदों गद्य दी जानकारी पता चली कि पहला पता ही नहीं सी हुंदा कि किस किस तरीके दा साहित्य हुंदा है। हिंदी साहित्य दे विच जदों गद्य दी विधा आंदी है ते आधुनिक हिंदी गद्य दी विधा दे विच महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नूं इस दा जनक मन्या जांदा है, और अज दे दिन उन्हां दा जन्म होया सी, यानी कि अज 15 मई है। 15 मई 1864 दे आसपास उन्हां दा जन्म मन्या जांदा है, 1864। देखो, और कविता दे विच जिहड़ा आधुनिक हिंदी भाषा है जिस दे विच असीं हुण अजकल मतलब जिस भाषा दे विच पढ़दे हाँ आधुनिक हिंदी कविता, उस विच महावीर प्रसाद द्विवेदी जी दी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हां दी उन्हां ने धर्म ते प्रेम इदां दे परंपरिक विषयां तो अग्गे वध के वखरा सोचिया ते लिखिया। अपनी कवितावां नूं, अपनी लेखनी नूं उन्हां ने थोड़ा होर ज्यादा विस्तृत कीता, व्यापक बनाया। इसे वजह करके हिंदी दे महान साहित्यकार, पत्रकार ते युग प्रवर्तक मन्ने जांदे ने महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य दे विच उन्हां दी जो उन्हां ने अविस्मरणीय सेवा कीती है, अपने युग दे विच उन्हां ने साहित्यक ते सांस्कृतिक चेतना ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਤੁਲਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਯੁੱਗ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1920 ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

हाँ जी, की कह रहे हो? ट्रैफिक च फसे हो? ट्रैफिक से तो मैं सवेरे 5:30 बजे फंस गई सी, हूँ तो 7:30 हो गए ने। टाइम हो गया जी 7:32 पूरे 6 सेकेंड। वैसे मैं लगता है कि ये जो ट्रैफिक वाला ना सिस्टम है, ये सही हो रहा है वैसे हौली हौली साढ़े शहर के, तुहाडे शहर के हाल चाल किवें ने? चलो तुम अपने भी दस दो, ट्रैफिक के भी दस दो। फिलहाल मेरा मतलब से कहना ट्रैफिक आ ना जी तंग उदों कर दी है जो असी स्मूथली और ट्रैफिक लाइट्स नू फॉलो ना करते हुए अपने मन नू फॉलो कर लेने। देखो देखो, तुसी दो चीज़ा मिक्स कर रहे हो, मैं तुहानू दस दी। ओके, लैट मी मेक इट वेरी सिंपल। मैं दिल नू फॉलो करन दी गल कही सी, मैनू पता है, आई एडमिट, पर वो दिल नू फॉलो करना हुंदे घर च बह के मन दे विच, मतलब अपनियां छोटी छोटी चीज़ा दे लई। रोड ते मन नू फॉलो बिल्कुल नहीं करना हुंदा, उदों नहीं ये गाना गाना हुंदा कि दिल तो बच्चा है जी। रोड ते स्याणे बनना हुंदा है। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ

ये चाह रखी हुई है ठंडी हो सकती है पर साड़ी वाइब हमेशा गर्म रहती है। ठीक है जल्दी नाल करो इस्तेमाल क्योंकि आज है जी फ्राइडे। अगर ऑलरेडी घूमने निकले हो तो चंगी गल है, लेकिन अगर मेरे वांगू जानदा सिर्फ प्लान प्लान ही है ना, ड्राफ्ट ही बनाया हुआ। सैटरडे आ रहा है, संडे भी आ रहा है, आज घर जाके बैग्स पैक कर लो, चलेंगे फिर घूमन। अपना अपना, तुसी अपना घूमियो, मैं अपना घूमूंगी, क्योंकि मंडे ब्लूज कैंसल हो चुके ने। मैं शुरुआत मंडे तो जरूर की थी, लेकिन देखो समापन कर रही हूँ इस वीक का प्यारे जे फ्राइडे वाले शो के नाल, क्योंकि मंडे ब्लूज कैंसल होके फ्राइडे हैप्पीनेस दे वाइब्स इत्थे ने, क्योंकि एफएम रेनबो तुहाडे नाल है। और फिलहाल मैंने एक होर गल याद आ रही है जिहड़ी बड़ी जरूरी मैं तुहानू दसनी सी। कहिंदे कि अगर कुछ करना होवे तो बंदा कर ही लैंदा है, बहाने बनाउण वाले बहाने बनाउंदे ने, करन वाले कर जांदे ने। फर्क एक होर एग्जाम्पल आ रही है मेरे दिमाग दे विच, वह यह है कि शाहकोट दी ही एक गल है जी, नेड़े अपने ज़्यादा दूर नहीं आपां जाणा, गांधी चौंक दे लागे शागे एक बड़ी मतलब इंस्पिरेशनल स्टोरी दसदी हां तुहानू, जिसने पूरे इलाके विच ना बहुत ही पॉजिटिविटी और मैनू लगता कि एंथुजियाजम जिहा भर दिता है। कीड़ी है भाई, देखो जिन्हां नू मौका मिलता पढ़न दा उह ते पढ़दे नहीं है, लेकिन अगर इरादे मजबूत होण कुछ भी करन दे, चाहे पढ़न दे या कुछ करन दे, तो कोई भी जिहड़ी रुकावट है तुहानू रोक नहीं सकदी। हुण गल इदां है कि लगभग 45 साल की संदीप कौर ने अपने बेटे जशनदीप सिंह दे नाल ही हाँ जी कट्ठिया ने 12th दे एग्जाम क्लीयर किए, 12वीं पास कर ली कट्ठे कट्ठिया ने, मदर एंड सन ने। और ये सोचो कि रोटी बेलदे हुए उन्होंने किताबा पढ़िया, 24 साल बाद एक माँ ने अपने बेटे दे नाल 12वीं पास की। कहिंदे ने कि रसोई दे विच भी मम्मी किताब खुली रखते होंगे सी और पढ़ते रहते, बेटा स्कूल पढ़ता सी, ट्यूशन जाके पढ़ता सी, मदर घर पढ़ते सी। उन्होंने सारिया चीज़ों नू, सारिया गल्लां नू और समाज विच जो भी गल्लां हो रही ने उन्होंने परे करके एक बार दरकिनार करके दिमाग दे बिल्कुल दूसरे कोने ते पासे ते लगा के सिर्फ अपने दिल दी सुनी और उन्होंने ओपन स्कूल दे विच दाखला लिया। 24 साल दे लंबे अंतराल तो बाद उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की थी। और बस मदर एंड उन्हों का बेटा सन इकट्ठे बैठे, एग्जाम दिता और दोनों पास हो गए। सोच के देखो उस मन के अंदर किन्नी खुशी हुई होएगी उस बेटे नू भी और उस मदर नू भी। बाकी सोचो थोड़ा जे इस बारे किहड़ियां गल्लां तुसीं कर सकते हो, तो सिर्फ गोल गोल ही घुमाई जा रहे हो अपने आप नू ते बाकियां नू भी। करके पासे करो ना, अगर कुछ है इरादा, कंसिस्टेंट एफर्ट्स जरूरी ने हर चीज़ लई, और यही एक बेसिक इनग्रीडियंट है अगर जिंदगी कोई गोल अचीव करना है, कोई सुपना पूरा करना चाहते हो या अपने आप दे विच भी कोई बदलाव लेके आना चाहते हो, तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स फॉर दैट थिंग इज मस्ट। आरजे पूजा टोहानी और फिलहाल मेरिया गल्लां सुन रहे हो तुसीं एफएम रेनबो ते और 102.7 दे नाल 103.6 दे जरिए सरहद पार दे प्यारे प्यारे दोस्त भी मैनूं सुन रहे ने। लेकिन उन्होंने किवें भुल जावा जो न्यूज आनी है यार दे जरिए सुन रहे ने मैनूं बिल्कुल लाइव, क्योंकि लाइव है तो लाइफ है और एफएम रेनबो मेरा फिलहाल दिल से दिल तक है। एंजॉय द ट्रैक।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

Musically yours and only yours और फिलहाल जरा time है वो ये कह रहे कि it's totally musical time यानी कि हुण टाइम हो गया है तुहाडी अड्डी नूं थोड़ा जा टपाउण दा टप्पण दे मौके देण दा यानी कि शुरू करन जा रही हाँ मैं यानी कि तुहाडी दोस्त पूजा टोहानी 8:42 हो चुके ने और ठीक 9 बजे तक ये जिहड़ा नॉन स्टॉप पंजाबी बीट म्यूजिक का सिलसिला चलेगा इस सैगमेंट रहेगा अड्डी टप्पा तो चलो फिर करते हैं जी तुहाडे वर्कआउट सैशन की शुरुआत वधिया जे गीतां दे नाल सो आ रहा है जी फर्स्ट ट्रैक इन अड्डी टप्पा स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

पेश नहीं एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे अते इटली दे 6 दिना दौरे लई रवाना होंगे। तेल कंपनियां ने पेट्रोल अते डीजल दी कीमतां विच 3-3 रुपए प्रति लीटर दा वादा कीता है। सरकार ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम तहत सोने की दरामद ते 100 किलोग्राम की सीमा तय की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 होर मुलजमान गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के वीडी सतीसन सोमवार को केरलम के नवे मुख्यमंत्री वजो सहु चुकणगे। उत्तर प्रदेश विच पिछले 36 घंटिया विच मीह तूफान अते असमानी बिजली डिगण कारण 111 लोकां दी मौत अते 200 दे जख्मी होण दी खबर है। खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि खेतीबाड़ी मंत्रालय ने देश भर दे पिंडां विच किसानां नूं खादां दी संतुलित वरतों बारे जागरूक करन लई एक मुहिम शुरू कीती है। मौसम विभाग वालों पंजाब ते हरियाणा विच 16 तो 19 मई तक जबरदस्त गर्मी पैण दा येलो अलर्ट जारी। भारत दी वुशु खिडारन अपर्णा दहिया ने मकाओ विच होए 11वें सांडा विश्व कप विच सोने दा तमगा जितया। ਅਤੇ IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी दोस्तों, छोटा जी कमर्शियल ब्रेक ऑन दिस एडना स्पोर्ट्स, तो बाद प्रोग्राम गीत बहार।

हम तो दीवाने हुए यार। ये गीत जड़ा जी बादशाह फिल्म दे विचों लिया गया है। शाहरुख खान अते ट्विंकल खन्ना ने इहदे विच अदाकारी कीती है। अभिजीत और अलका याग्निक ने गीत गाया है। म्यूजिक डायरेक्ट किया है जी अनु मलिक एंड लिरिक्स इस गीत दे विच दित्ते ने समीर जी ने। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से प्रोग्राम गीत बहार दा समा जिहड़ा ना उह भजदा जा रहा है ते आप भजदे समय नूं कदी भी रोक नहीं सकदे। पर तुसी किधरे नहीं जाना क्योंकि इस प्रोग्राम तो बाद अगला प्रोग्राम तुहाडा सब दा फेवरेट शो होएगा। तो जी उहदे वास्ते तुहानूं थोड़ा जिहा करना पएगा इंतजार। इस प्रोग्राम यानी कि गीत बहार दा आखिर वाला गीत तुसी इंजॉय करोगे मेरे नाल यानी कि अपनी प्यारी आरजे दोस्त रणदीप दे नाल। ते उस तो बाद अगला प्रोग्राम जल्द लैके हाजिर होनी आ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: गांव वालों, बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। कसम सुनते रहिए 102.7 एफएम रेनबो।
1: ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है, 102.7 एफएम रेनबो की प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रही है मैं, यानी थोड़ी प्यारी आरजे दोस्त रणदीप कौर। ते प्रोग्राम दा नाम है जी होम स्वीट होम। जी हाँ जी हाँ, तुहाडे इंतज़ार दीआं घड़ियां जिहड़ियां खत्म हो जाणियां ने, क्योंकि जी बहुत सारी जानकारी इनफॉर्मेशन ते

जी दोस्तों, FM बैंड 102.7 MHz से प्रोग्राम चल रहा है जी, गीत बहार। गीत बहार नहीं, हाय हाय, तुसी भी सोचने लग गए कि भई गीत बहार क्यों चलन लग पे। हाँ जी, मैं तुहाडा ना ध्यान जिहड़ा ना इधर खिंचना चाहुंदी सी, क्योंकि तुसी घर दे कम्मां दे नाल नाल कितने भुल जाने हो, मतलब गाना इंजॉय करदे करदे तुसी जो नोट करना हुंदे ना वह तुहानू चेता भुल जाता। हाँ जी, प्रोग्राम गीत बहार नहीं, होम स्वीट होम है। जी, जिते खाण पीन वालिया गल्लां आपां कर रहे सी, मतलब सीड्स दे बारे, बीजां दे बारे मैं गल कीती, उत्थे क्यों ना हुण पीन वाली किसी चीज़ की गलबात होवे, क्योंकि जी गर्मी हालांकि अपने पीक ते नहीं है, पर फिर भी एक चीज़ जिहड़ी है ना बचपन दे विच सारे खांदे सी, हालांकि वड्डे होके कई बार असीं उह चीज़ां भुल जांदे, क्योंकि साडे कोल ना खाण वाली वरायटी बड़ी हुंदी है, मतलब पीन वालियां चीज़ां दी भी बहुत सारी वरायटी हुंदी है। लेकिन ये गल, ये शब्द जिहदा नाम है जी गोंद कतीरा। हाँ जी, गर्मियां दे विच ना बड़ी स्वाद लगती है गोंद कतीरा, हर किसी ने पीती हुई है दुध दे विच पा के, कई तो इन्हूं पानी दे विच भी ना नींबू निचोड़ के पी जांदे ने, गटाक देनी, क्योंकि स्वाद लगती है, बई स्वाद हुंदी भी है। गोंद कतीरा ना एक कुदरती गोंद है जो कि कुछ खास दरख्तों तो प्राप्त होंदी है। गर्मी के मौसम में इसका वरतों खास तौर पर किया जाता है, इसकी वरतों क्योंकि जी ये शरीर में जड़ी ना ठंडक पहुँचाती है। इसनों रात भर पानी में डिप करके रखने के नाल, भिओ के रखने के नाल, ये ना कुछ घंटे बाद ना हौली हौली ना एक जैली वर्गा पदार्थ जहा बन जाता, जे तुसीं देखिया हो। हाँ जी बिल्कुल जी, उन्होंने ही कहिंदे ने गोंद कतीरा। जो भर गर्मी होंदी ना तो असी सफ़र करते हुए फिर सानू ना रस्ते दे विच एहो जिहियां कुछ रेहड़ियाँ जां कोई एहो जिहियां शॉप्स दिखाई दिंदियां ने जिथे एहो जिहियां चीज़ां मिलदियां ने, तो फिर साडा बदो बदी मन करता है कि वाकई भी हुण ठंडा पानी, नींबू पानी या शकैश कंजवी या फिर गोंद कतीरा मिल जाए ना, तो वाकई साडे ठंड पै जाए। हाँ जी बिल्कुल जी, इस तरह तुहानूं तुहाडी रूह नूं ठंडक देने लई गोंद कतीरा दे मैं फायदे दसन जा रही हाँ। शरीर नूं ठंडक तां दिंदा ही है, गर्मी अते लू तो बचाउण लई गोंद कतीरा बहुत ही लाभदायक मन्निया जांदा है। ये शरीर दा ना तापमान जिहड़ा बैलेंस्ड करके रखदा है, एंड जी पेट लई भी फायदेमंद है, इहदे नाल कबज़, एसिडिटी अते पेट दी गर्मी जिहड़ी ना वो घट जांदी है, मतलब काफ़ी चीज़ां नूं इह बैलेंस करके रखदा है। पानी विच भिगो के जदों गोंद कतीरा रखदे हां तो उहदा

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस

0: गांव वालों बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। मां कसम सुनते रहिए 102.7 एफएम रेनबो।
1: जी दोस्तों, ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से एक बार फिर तो थोड़ा स्वागत है जी, वेलकम बैक। तो 1:02 हो चुके हैं, तो प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ तुम मेरे नाल इंजॉय करोगे, यानी कि तुहाडी प्यारी दोस्त रणदीप कौर दे नाल पूरे 2 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। नाल दी नाल कम किते ते नाल दी नाल होएगी जी ये आवाज़, ये अंदाज़ ते ये बहार गीतां दी। लता मंगेशकर दी एंड शबीर कुमार दी आवाज़ दे विच गीत है जी 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

जी बिल्कुल सच ही कहा है किसी ने, जी हाँ सच ही कहा है किसी ने। रोज एक ताज़ा शेर कहाँ तक लिखूं तेरे लिए, रोज एक ताज़ा शेर कहाँ तक लिखूं तेरे लिए, तुझ में तो रोज़ ही ऐ दोस्त ऐ हमसफ़र, तुझ में तो रोज़ ही एक नई बात हुआ करती है, एक नई बात हुआ करती है।

एक लाइन में क्या तेरी तारीफ़ करूं, मैं एक लाइन में क्या तेरी तारीफ़ लिखूं, पानी भी जो देखे तुझे, पानी भी जो देखे तुझे प्यासा हो जाए।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर न्यूज़ ऑन AIR दे ज़रिए दोस्त इस वेले प्रोग्राम सुन रहे ने जी जिसका नाम है दिल आज शायर है। इस प्रोग्राम दे विच अगली शायरी साढ़े तक पहुँचती कर रहे ने जी साढ़े दोस्त किरण अरोला जी ग्रीन पार्क कपूरथला तो प्यार भरी गुड आफ्टरनून दे नाल लिख रहे ने कि नखरे भी तेरे सोहणे अदा विच प्यार है नखरे भी तेरे सोहणे अदा विच बड़ा प्यार है तेरे इंतजार दा सजना दिल नू हर पल खुमार है मुहब्बत तेरी रब वर्गी रूह तक असर कर गई तेरा नाम लेंदे ही जाना धड़कन भी शायर बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया जी इन्ना प्यार देने वास्ते इस प्रोग्राम दे विच थैंक यू सो मच किरण जी अपनी शायरी साढ़े नाल सांझी करन लई। अगली शायरी साढ़े नाल सांझी कर रहे हैं जी प्यार भरी सत श्री अकाल अर्ज कर रहे हैं बलविंदर सरा पिंड मोड़जंड सिखा हनुमानगढ़ तो लिख रहे हैं कि दर्द हर किसी का होता है पर दिल में जो दर्द होता है उसका एहसास कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल जी दिल दे दर्दां दा दिल दे विच जो दर्द है जी उसके जो हालात ने वो असी तुहानू सुना चुके ऑलरेडी मास्टर सलीम की आवाज़ के दिल के जो दर्द ने जो

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: अगर बचपन सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है, और अगर परिवार मजबूत है तो समाज मजबूत है। एक बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है, जहां वह सिर्फ बोलना नहीं जीना सीखता है। परिवार वह छत है जहां बचपन सपने देखते हैं, और वही नींव है जहां भविष्य खड़ा होता है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हर साल 15 मई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाती है। इस दिन का उद्देश्य परिवारों की भूमिका और समाज में उनके महत्व को समझना है। इस वर्ष की थीम है फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग, यानी परिवारों के भीतर और समाज में मौजूद असमानताओं के बीच बच्चों का शारीरिक और मानसिक कल्याण। बच्चों का स्वास्थ्य विकास अच्छे भोजन और शिक्षा के साथ साथ एक सुरक्षित सहयोगी और भावनात्मक रूप से मजबूत पारिवारिक माहौल से भी जुड़ा होता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो विशेष विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर MS तोमर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: थैंक यू।
1: और साथ हैं KR चटर्जी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
3: नमस्कार, थैंक यू।
1: श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप

0: दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 01 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे परिवारों में मौजूद असमानताएँ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो डॉक्टर MS तोमर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के विकास के लिए फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है।
1: देखिए, परिवार का बहुत ज़्यादा रोल होता है बच्चे के विकास में। सबसे पहले देखिए, परिवार का जो कंसेप्ट है बहुत पुराना है, बड़ा क्लियर कट डिफाइन किया गया है हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में, कि स्नेह संरक्षण उत्तरदायित्व एवं संस्कार है संयुक्त समूह परिवार है। अर्थात प्रेम, सुरक्षा, जिम्मेदारी और संस्कार से जुड़े लोगों का समूह ही परिवार है। तो जब भी हम परिवार की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि उस परिवार में ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। जैसे प्रेम है, सुरक्षा है, एक दूसरे को सिक्योरिटी फील होना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग सिस्टम वो हमें क्रिएट करना है। जिम्मेदारी, हर किसी की एक जिम्मेदारी तय होना चाहिए, उस जिम्मेदारी का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोग कितना निर्वहन कर रहे हैं। और संस्कार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चों में जो हम संस्कार देते हैं, वही जो हम बिहेव करते हैं, वही संस्कार बच्चों में जाते हैं। तो जितना फैमिली का अच्छा ये सारे पॉइंट्स हैं, उतना ही बच्चा के विकास पे असर पड़ता है परिवार का।
0: किया जी, आपसे जानेंगे कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे करें।
2: जी देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनको अपने माँ से एक जुड़ाव होता है और वो अपने माँ के साथ रहता है, तो जब पढ़ता रहता है तो प्यार पनपता है। सो जैसे आज आपका टॉपिक है लव, सो उसमें भी बच्चा अच्छी तरह ही पनप जाता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है, माँ को या पापा को उनको जादू की झप्पी दे के या उनके साथ बैठ के उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके उनको पास रखना होता है। जितना पास रखेंगे, जो फिज़िकल टच होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, मानसिक एज वेल एज इमोशनल। अब हम आते हैं डॉक्टर गैरी चैपमैन, जो जिन्होंने रिसर्च किया और एक बुक भी पब्लिश किया, 5 Love Languages ऑफ किड्स। उसमें क्या होता है, उन्होंने डिफ़ाइन किया कि 5 Love Languages, जैसे कि ना कुछ बच्चों को गिफ्ट मिलना बहुत पसंद है, वो फर्स्ट हो गया उसका लव लैंग्वेज। फिर किसी को तारीफ़ करना पसंद है तो वो हो गया सेकेंड लव लैंग्वेज। फिर हो गया फिज़िकल क्लोजनेस। फिर हो गया है कम्युनिकेशन, कैसे हम बातचीत करते हैं बच्चों के साथ। फिर हो गया है ख्याल रखना। तो ये 5 चीज़ें हो गए। तो जिस बच्चे का माँ को पता लग जाता है कि उस बच्चे का कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सा सेकंड, कौन सा फिफ्थ, उस हिसाब से बच्चों को प्यार देना चाहिए। अब वो तो बचपन की बात हो गई। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाने लगता है बच्चा, तो उसमें उसके पीयर्स आ जाते हैं, स्कूल फ्रेंड्स आते हैं, तो माँ को पापा को सारा टाइम एक बच्चों को एक माहौल देना है, एक उनको सेफ्टी नेट देना है कि बच्चे तुम्हारे लिए हम सदा पास में रहते हैं, तो बच्चा खुल के बात करेगा। ऐसे करते करते जब बचपन से माँ बाप का सपोर्ट रहता है, बच्चा जब बड़ा होता है तब उनका अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस के साथ आता है उनका पढ़ाई का उच्च होने का इच्छा, कॉम्पिटिटिवनेस, फिर सब कार्य में उनकी मन की इच्छा भी बड़ी होती है। फिर उनको स्पोर्ट्स में डालते हैं, फिर स्पोर्ट्स से माइंड खेलता है। तो ऐसे करके मेंटल विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है,
0: मतलब मेंटल सिक्योरिटी मेंटली स्ट्रांग करती है बच्चों को। एग्जैक्टली,
2: तो वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना नींव,
0: जी
2: तो नींव से ही स्टार्ट करना होता है।
0: जी, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर। हेलो
3: हेलो
0: हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम?
3: नमस्कार जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
0: जी बताइए, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में।
3: पहले इस सबसे बेहतरीन परिवार को मैं बधाई देती हूँ।
0: जी धन्यवाद,
2: थैंक यू।
0: रेडियो डॉक्टर आपका परिवार है और आप भी इस रेडियो डॉक्टर का हिस्सा हैं।
3: मैं हिस्सा हूँ, पर मेरा सबसे प्यारा परिवार यही है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: एक तो मैं रेडियो फ्रीक हूँ, रेडियो में बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ, टीवी मेरे को अच्छा नहीं लगता, पर आपका प्रोग्राम मैं एक महीना कनाडा गई थी, बहुत मिस किया। तो इसलिए आप सबको बहुत बधाई।
0: और आपने मिस करा, अगर आप लोगों का कॉल नहीं आता तो शायद हम भी आप लोगों को मिस करते हैं। आप हमसे जुड़े रहते हैं, यही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए प्रोग्राम में हर बार एक नया टॉपिक लेकर आए। तो बताइए मिसेज बेदी, क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा प्रश्न सबसे पहले तो ये जो

0: उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया ना, पांच प्यार के स्टेप्स बच्चों के लिए.
1: हाँ जी,
0: बच्चों की ग्रोथ आजकल इसलिए रुक रही है कि एक तो पेरेंट्स की आपस में ज्यादा अच्छे से नहीं रहते, क्योंकि
1: सही में
0: जॉब
1: बिल्कुल
0: में काफी डिफिकल्टीज आती हैं. अगर पेरेंट्स ही झगड़ेंगे तो बच्चे की ग्रोथ बहुत खराब हो जाएगी.
1: जी बिल्कुल
0: दूसरा, फैमिली में अब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते, सबसे बड़ी ये कमी आ गई है कि बच्चों की ग्रोथ बढ़िया ही नहीं
2: बहुत
0: है.
2: अच्छा
0: उनकी
2: पूछा आपने मैडम।
0: गाइडेंस,
2: क्वेश्चन करें तो शायद ज्यादा
0: हाँ, बस
2: लोग
0: क्वेश्चन मैं आपको यही
2: जी
0: कर रही हूँ कि क्वेश्चन नहीं है मेरी आपसे, बस यही
2: जी
0: रिक्वेस्ट है कि आपका मैसेज दुनिया जाने
2: जी
0: और आपका मैसेज दूर दूर तक पहुंचे कि फैमिली बहुत जरूरी है. न्यूक्लियर फैमिली कोई फैमिली नहीं है.
1: जी हाँ,
0: तो
1: आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं
0: हाँ,
1: कि
0: तो मैं आप
1: फैमिली लोगों
0: सबका,
1: कितनी इम्पोर्टेंट है और फैमिली में रहकर बच्चों का विकास कितना ज़्यादा ज़रूरी है।
0: हाँ जी, तो मैं, मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, पर मैं थैंकफुल हूँ आपकी कि
2: थैंक यू।
0: इतना बढ़िया आप लोगों का कंसेप्ट है जो

0: फैमिली कोई फैमिली नहीं है।
1: जी हाँ, आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं
0: हाँ
1: कि
0: तो मैं
1: फैमिली
0: आप
1: लोगों
0: सब
1: कितनी इम्पोर्टेंट है और फैमिली में रहकर बच्चों का विकास कितना ज़्यादा ज़रूरी है।
0: हाँ जी, तो मैं मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है पर मैं थैंकफुल हूँ आपकी कि
2: थैंक यू,
0: इतना बढ़िया आप लोगों का कॉन्सेप्ट है जो आज का है।
1: जी
2: थैंक
1: हम
2: यू
1: भी आपके
2: थैंक
1: लिए
2: यू।
1: बहुत थैंकफुल, आप हमारे साथ, आपने कॉल किया हमारे साथ जुड़े
0: हाँ
1: रेडियो डॉक्टर में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तोमर, जैसे कि अभी केयर जी ने कहा कि मानसिक विकास बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, ऐसे में अगर हम बात करें शारीरिक विकास के लिए, तो बच्चों का शारीरिक विकास कैसे करें कि बचपन से ही उनकी ग्रोथ सही हो?
2: देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि बच्चे का जो विकास है, बच्चे की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, कैसा बनेगा, वो उसके पैदा होने के 100 साल पहले से शुरू हो जाता है। तो पूरी फैमिली को इस पे ध्यान देना है। हम लोग बच्चा पैदा होने के बाद सोचते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं। कई बार तो 6 महीने पर बच्चा हो जाता है, उसके बाद आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए मेरा बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। बल्कि जब से बच्चा पेट में आता है, कंसेप्शन से, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन से आपको उसकी हेल्थ के बारे में सोचना है। क्योंकि आपका जो, हमारी लैंग्वेज, मेडिकल लैंग्वेज में एक गोल्डन 1000 डेज कहते हैं हम इसको, 1000 दिन जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टू टिल 2 ईयर्स ऑफ एज। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मदर का आपको पूरा ख्याल रखना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, उसकी डाइट को अच्छा रखना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा विकास बच्चे का पेट के अंदर ही हो जाता है। जो बच्चे के अंग बनते हैं, बच्चे का मानसिक विकास होता है, उसी को आपको कैरी ऑन करना है।
3: इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला ना, तो ये बच्चों का घर में एक माहौल अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चे ना अपने पेरेंट्स से अब्सॉर्ब कर लेते हैं उनकी परेशानियाँ, जैसे कि आर्थिक परेशानियाँ हुए या नॉर्मल कोई भी ऑफिस रिलेटेड हुआ या मानसिक परेशानी, तो बच्चे वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उनके बिहेवियर में आता है, जैसे वो झल्लाहट करते हैं या टीनेज टैंट्रम्स करते हैं, कुछ
2: बिल्कुल,
3: भी
2: बिल्कुल
3: पिटफुल। तो उस वजह से बच्चों को देखना होगा कि भाई माहौल अच्छा है तो ही वो अच्छी तरह कर पाएंगे।
2: बिल्कुल,
1: माहौल से हम भी इस माहौल को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत
2: जी।

0: खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा। घर घर तभी लगता है जब परिवार में सभी सदस्य हों, सभी आपस में मिलजुल कर रहें। जैसे कि एक कॉलर ने पहले हमसे लाइन पे कहा था कि आजकल माता पिता वर्किंग है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते।
1: जी, जी।
0: तो ऐसे में बच्चों के वेलबींग के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो माता पिता को क्या करना चाहिए जिससे उनकी शारीरिक ग्रोथ सही हो, वो हेल्दी हो? क्योंकि अक्सर हम कह देते हैं हेल्दी है, लेकिन बच्चे इतने हेल्दी नहीं होते, तो क्या किया जाए?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा हेल्दी की डेफिनेशन क्या होती है, हेल्दी होता क्या है बेसिकली। तो अगर आप WHO की डेफिनेशन को देखें तो इसका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। तो कोई बच्चे का वेट अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी हो गया। उसको इमोशनली कितना स्ट्रांग है बच्चा, सोशली वेलबींग है कि नहीं उसकी, तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। दूसरा, अभी जो हमारे कॉलर ने एक क्वेश्चन उठाया था कि पेरेंट्स घर में झगड़ते हैं या कुछ करते हैं, तो हमेशा याद रखिए, हम जो पेरेंट्स को समझाते हैं कि जैसे ही बच्चा आपके घर में आता है, तो मान के चलिए आपके घर में एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है, वो आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, एग्जैक्टली आप कैसे दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हैं, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन कैसा है, आपका बाकी फिजिकल एक्टिविटी आप कितनी कर रहे हैं, वो सारा आपका बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। और जाने अनजाने में है, जो ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है उसी को हम संस्कार कहते हैं। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रखना पड़ेगा। आपको झगड़ना है वो नेचुरल, आप अकेले में भी झगड़ सकते हैं, आपको एंगर को मैनेजमेंट करना है, और जैसा आप बिहेव करेंगे वैसे ही आपका बच्चा वो करेगा। बाकी मैडम आप बताइए, कुछ ऐड कॉन करना चाहें इसमें?
0: हाँ किया जी, आप बताइए कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए परिवार का क्या रोल रहना चाहिए, कितना अपनापन उनको देना चाहिए?
2: जी देखिए, बचपन से ही बच्चों के साथ रहना चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला है। उनके साथ खेले, माँ बाप खेले उनके साथ, हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, उनको फील करवाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनको बचपन से ही के ग्रैटिट्यूड का फीलिंग दिलवाना चाहिए कि जी थैंकफुल रहे बड़ों से, या जिनसे भी तुम मिल रहा है तुम्हें थैंकफुल रहे। फिर हम आते हैं कि थोड़े जब बच्चे बड़े हो गए हैं, तब जब वो स्कूल जाते हैं, तब उनमें एक पीयर्स प्रेशर के बोल भी बोल सकते हैं या अदरवाइज ऑल्सो, उनमें एक एग्रेशन आता है, एंगर बिहेवियर आता है। उस टाइम पेरेंट्स को चाहिए कि शांति से चीज़ों को सुलझाएं। वो कैसे कराएंगे? वो पहले तो जब देखेंगे कि एटमॉस्फेयर अगर बिगड़ रहा है, तो वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि वो अपने से ही संभल जाए। उसके बाद उनको समझाएंगे, कहानियों के माध्यम से समझाएंगे कि ये उचित है ये नहीं उचित है, ऐसे करके। उसके बाद एक दैनिक दिनचर्या पर टिके रहे, ताकि एक डिसिप्लिन लाए बच्चों में, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होएगा, माइंड में एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, उससे बच्चों का विकास में भी परिवर्तन आएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ठीक है ना। उसके बाद जो परिस्थितियों से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो परिस्थितियाँ फिर से ना आए, ये माँ बाप को ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो बच्चे कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें, ये नहीं कि उनको धुतकारे। क्योंकि जैसे माँ बाप, जैसे आज डॉक्टर साहब ने बोला कि माँ बाप जैसे करते हैं वो बच्चे इम्बाइब कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि नॉर्मल है कि माँ बाप झगड़ रहे हैं, इस पर चर्चा विचार करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको ठीक पथ पे जाना है। इसीलिए उन बच्चों के साथ समय बिताएं, फिर उनको जब बाहर ले जाए फिर प्रोत्साहित कीजिए कोई भी एक्टिविटीज़ में, जैसे गाना हुआ, उसमें माइंड का बहुत ही

0: असर होता है। फिर योगा हुआ, फिर मेडिटेशन हुआ, इन सब चीज़ों में जो नर्व्स होते हैं उनको सूदिंग मिलता है। फिर प्रैक्टिस करना चाहिए कि एकांत कैसे रहा जा सकता है, उसमें बहुत ही अच्छा होता है। फिर एग्ज़ाम्स में परिवर्तन आता है, ऐसे करके शुरू से ही बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट में ध्यान रखे पेरेंट्स।
1: लेकिन आजकल जहाँ सोशल मीडिया के टाइम पे बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, तो बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते खेलने के लिए,
0: क्योंकि उनके होमवर्क भी तो बहुत आते हैं और सारा इंटरनेट से ही आता है।
1: जी, तो बच्चे बोलना नहीं चाहते, तो ऐसे में उनका शारीरिक विकास कैसे करें? डॉक्टर तोमर आप बताइए।
2: देखिए, आजकल के खास करके न्यूक्लियर फैमिलीज में जहाँ दोनों ही माँ बाप वर्किंग हैं, बहुत मुश्किल हो गया है टाइम को मैनेज करना। और ख़ास करके बच्चों को गुड क्वालिटी टाइम है वो नहीं मिल पा रहा है, और टाइम पेरेंट्स दे भी रहे हैं तो उसमें क्वालिटी टाइम नहीं है, एंगेजमेंट बच्चे के साथ बहुत कम हो रहा है। स्क्रीन बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है। इधर एक क्लियर कट गाइडलाइंस कि 2 साल से पहले, 18 महीने से पहले बच्चे को स्क्रीन दिखाना ही नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है वो खाना नहीं खाता।
1: हम
2: मम्मी को लगता है यस, तो उसको खाना खिलाने के लिए अक्सर मना करते हैं कि आपको बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाना, लेकिन मम्मी कहती है सर मैं सिर्फ खाना खाते समय दिखाती
0: हूँ। एग्जैक्टली
2: एग्जैक्टली, आपका बच्चा कोई डस्टबिन नहीं है कि आपने मोबाइल के थ्रू उसका मुंह खोला और अंदर खाना डाल दिया, वो खाना उसको हजम भी नहीं होगा, उसको कोई फायदा भी नहीं होना, वो कुछ सीख ही नहीं रहा उस खाने से, उसको टेस्ट को नहीं ले रहा बच्चा, सिर्फ मुंह में अंदर जा रहा है। तो कभी भी बच्चे को शुरुआत वहीं से होती है 5-6 महीने से कि बच्चा जब खाना नहीं खाता है, तो स्क्रीन टाइम के लिए गाइडलाइंस बड़ी फिक्स हैं। आपको 2 से 5 साल का बच्चा है मैक्सिमम आपको 1 आवर तक आपको देना है, 5 साल से ऊपर बच्चे को 1 to 2 आवर्स आप दे सकते हैं, बट उसमें भी आपको कंट्रोल रखना है स्क्रीन और डिजिटल कंट्रोल, जो पेरेंटिंग कंट्रोल है वो आपको रखना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है। इतना सारी समस्याएं आज के टाइम में हम लोग देखते हैं, खास करके हमारे क्लिनिक्स में बच्चे बहुत टेंट्रम शो करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिव बच्चे हो रहे हैं, जिनका न केवल स्क्रीन की वजह से बल्कि जंक फूड को भी आपको डिस्कस करेंगे बाद में, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं और पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो एग्जैक्टली टाइम से आप सलाह लें कि कैसे आपको आगे बढ़ना है।
1: देखा जाए तो बचपन से हमने ही उनको आदत फोन देकर एक आदत डाल दी।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: लगता है कि बाहर जाएंगे इस अच्छे एक जगह बैठे हैं फोन देख लें। तो लेकिन इसके लिए पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि बच्चों को फोन ना दें?
2: बिल्कुल डिजिटल फ्री जोन आपको डिक्लेयर करना है घर में, कि जैसे आप जहाँ खाना खा रहे हैं वहाँ डिजिटल बिल्कुल अलाउड ही नहीं होना चाहिए, वो एरिया बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए। आपका बच्चों का बेड है जहाँ पर आप सो रहे हैं वो बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए, वहाँ अलाउड ही ना होना चाहिए। 1 घंटे पहले बिल्कुल आपको मोबाइल और टीवी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो रूल्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे, अच्छा लगता है बच्चे फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं।
1: और बच्चों का जो खाली टाइम है उस पर फोन देने की बजाय बच्चों को बाहर वर्कआउट के लिए ले
2: जाएं, दिस इज द ओनली वे। बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें, ये तो मानता ही नहीं है, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता, जितने बच्चों को आप बाहर स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करेंगे बच्चा आपका मोबाइल छुएगा तक नहीं, प्रॉपर टाइम दीजिए स्पोर्ट्स के लिए।
0: लेकिन आजकल माँ बाप ही इतना फोन पे रहते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं माँ बाप जो गेमिंग में आते हैं
2: बिल्कुल,
0: और फिर बच्चे इतने छोटे होते हैं 2-3 साल से वो मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते हैं, तब एज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हम थेरेपी देते हैं बच्चों को, प्रॉपर थेरेपी।
1: उसमें क्या होता है थेरेपी में?
0: देखिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज, न्यूरो इज माइंड रिलेटेड, लिंग्विस्टिक हम जो बात करते हैं अपने माइंड के साथ, और प्रोग्रामिंग हम जैसे प्रोग्राम्ड हुए हैं इतने सालों से। ठीक है, नाउ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है कुछ ये टूल्स है, मतलब कुछ एक्सरसाइजेस है जिसके माध्यम से हम एक पेशेंट्स को थेरेपी से ठीक करते हैं। इसमें हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज डिफरेंट टेक्निक्स हैं उससे हम रिलैक्स करवाते हैं पेशेंट को, उसके बाद एक्सरसाइजेस हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद वो बच्चा एक्सरसाइजेस थ्रू माइंड रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो कि नथीटा टाइम में होते हैं, जो सुबह का टाइम होता है, उस टाइम में प्रैक्टिस कर करके वो ठीक होते हैं। बट ये भी पेरेंट्स का ही हाथ होना चाहिए, उनका सपोर्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना कि एक रूल बनाना चाहिए, लेकिन जनरली पेरेंट्स बनाते नहीं है क्योंकि उनके कन्वीनियंस पे चलता है सब कुछ
1: जी।
0: तो अगर वो पेरेंट्स रूल बना दे जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, तो वो एकदम बच्चा ठीक हो जाता है। तो जैसे
2: मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें, हर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उनका रोल क्या है, उन्हें क्या करना है। एग्जैक्टली उन्हें क्या लगता है कि अच्छी बुक्स दे देना, अच्छे उनके लिए मोबाइल या कुछ गेमिंग जो आजकल आते हैं वो दे देना, वो पेरेंटिंग नहीं है।
0: वो एग्जैक्टली
2: आपको ये सीखना है कि आपका रोल एज ए पेरेंट्स, माँ बाप का रोल इतना होता है कि बच्चे को अच्छी लाइफ जीना

0: कैसे सिखाना है वो आपको आना चाहिए।
1: देखा जाए तो अगर स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आते
0: हैं, बहुत सारा फर्क पड़ रहा है इसका।
2: आप मानेंगे नहीं, बच्चे बचपन
0: 90% यस यस 90% प्रॉब्लम्स बच्चों की हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन है, जो कि मैं हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मैडम आपने भी देखा हुआ?
2: हाँ हाँ बिल्कुल, वेपिंग में आ जाते हैं बचपन से, ये ड्रग एडिक्शन में आ जाते हैं, बट एक बार अगर आ गए तो बस लाइफ तो गई।
1: तो बच्चों में एंग्जाइटी हो गई, वो शायद लोनलीनेस में चले जाते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ सोशल होना पसंद नहीं करते।
0: yes, yes.
2: उसके लिए भी हम NLP के थ्रू उनको थेरेपी देते हैं, तब वो सुधरते हैं। अदरवाइज और देखा गया है कि ये जो इंडिया में मानसिक अवस्था है वो कुछ अच्छी नहीं है। वो 5 crore किड्स दे आर अफेक्टेड, पीड़ित है, और 80-90% जो पेशेंट्स है, मतलब प्रॉब्लम है जिनमें, वो चिकित्सा ही नहीं करवाते कुछ सोशल स्टिग्मा के वजह से, और कुछ जानने ही नहीं खुद पाते हैं कि
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और ये सारा स्टार्ट होता है यही एग्रेशन से, फिर एंगर से, डिप्रेशन, बिहेवियर डिसऑर्डर, और घर से ही तो शुरू होता है ये पहले।
1: एक मैसेज हमारे पास ये हाँ लिखते हैं राजेश कुमार चौहान जालंधर से, ये लिखते हैं नमस्कार, बच्चों को प्रेरक कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करने से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है, लेकिन ऐसा ना स्कूलों में हो रहा है ना घरों में, तो क्या इसके लिए कुछ काम नहीं किया जा सकता? डॉक्टर तोमर पहले आप बताएं इस पे।
0: देखिए
1: शारीरिक पूछ रहे हैं कि शारीरिक विकास
0: हाँ
1: कैसे करें।
0: हाँ जी हाँ जी ये कहानी पढ़ने से शारीरिक विकास होगा ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया, बट डेफिनेटली बच्चे की मेमोरी अच्छी बनती है जब कहानी सुनते हैं, एक बॉन्डिंग बढ़ती है। अक्सर जो दादी माँ की कहानियाँ हुआ करती थी वो एक मैसेज भी देती थी कहीं ना कहीं, तो वो जो हम वैल्यू सीखते हैं परिवार से, तो वो कहानी के थ्रू ही हमें सिखाया जाता था। शारीरिक विकास के लिए तो आपको बच्चे को अच्छा खाना देना है, हेल्दी डाइट देनी है, बच्चे का जो खेलने कूदने का समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है, और स्क्रीन से आपको दूर रखना है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो स्क्रीन से हो रहा है बच्चों
1: को। स्क्रीन टाइम से बचने के लिए ही बच्चों को शायद कहानी पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि प्रेरित कैसे करें। हाँ, तो इस पे किया जी आप क्या कहेंगे?
2: जरूर, इससे जब बच्चे कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे भी, माइंड को जाएगा वो आवाज़, तो सूदिंग इफेक्ट होगा नर्व्स में, ब्रेन के नर्व्स में होगा, और फिर वो बातों में फिर वो सब आता जाएगा, और फिर जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हेडेक होता है बच्चों को, स्टमक एक होता है, वो पता लगता रहता है कि बच्चा ठीक से जैसे कि ना चल, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, ये सब मेंटल इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं उससे पता लगता है। तो ये ज़रूरी है कि कहानियों के माध्यम से ही बच्चों को बहुत आराम मिलता है।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं सभी स्टूडियो में आए एक्सपर्ट और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून।
2: थैंक यू।
1: वो लिखते हैं स्कूल में इस विषय में क्या कोई कार्य हो रहा है, इनका कोई काउंसलिंग होता है क्या, कृपया बताएं। थैंक्स नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार उत्तराखंड। तो क्या जी आप क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि काउंसलिंग की
2: बात ये तो होता है। हैप्पीनेस करिकुलम तो खूब ही चल रहा है आजकल, प्रधानमंत्री का जो ये है, कुछ करिकुलम्स है हर स्कूल में चल रहा है, तो स्कूल्स में करते हैं काफी लोग,
1: बच्चों की भी काउंसलिंग होती है, शायद पेरेंट्स की भी होती है कि वो बच्चों के
2: साथ का तो होता है। पीटीएम मीटिंग्स हम हर समय पहुंचाते सैटरडेज को।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं देवदत्त परसोलिया, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस, नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू देवदत्त जी,
0: थैंक यू सो मच।
1: इस पर बातें हम और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: मेरी दुनिया तू ही रे, हर माँ बाप को बच्चे को ये फील कराना ज़रूरी है कि मेरी दुनिया तू ही रे, जिससे एक परिवार में एक बॉन्डिंग दिखे। डॉक्टर तोमर, आप हमें बताइए कि बच्चे की बचपन से हर एज ग्रुप में ग्रोथ प्रॉपर हो, उसके लिए हम क्या करें, क्या क्या हमें देखना चाहिए कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है या कहाँ लैक कर रहे हैं, कैसे पहचाने?
2: देखिए, जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उसकी वेलबींग के बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे कि हमने बताया था व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज गोल्डन 1000 डेज, जो हम पहले भी आप डिस्कस किए थे। शुरू के 9 महीने का जो गर्भावस्था का समय होता है और उसके अलावा जो 2 साल हैं, बच्चे का

0: मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट 90% उसी एज में हो जाता है। अक्सर हमें लगता है कि 2 साल के बाद बच्चा इंटेलिजेंट बन जाएगा, उसका बुद्धिमान बन जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। आईक्यू लेवल जो होता है बच्चे का वो 2 साल तक ही डेवलपमेंट होता है, 90% हो जाता है या मैक्सिमम 3 ईयर्स तक हो जाता है। तो जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उस समय उसके मेंटल डेवलपमेंट पे और उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर, दोनों पे ही शारीरिक और मानसिक विकास पे हमें काम करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ बहुत पहले से, हजारों सालों पहले से गर्भ संस्कार जैसे एक कंसेप्ट आया था। जैसे आपने अगर सुना होगा तो जैसे अभिमन्यु था, पेट में से सीख के आया था, ऐसा नहीं था कि कोई मैजिक हुआ होगा या कुछ सीख के आया होगा। दैट वॉज ए टोटली एपिजेनेटिस, मीन्स वो कंडीशनिंग इस तरीके से किया गया कि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा हुआ। तो वो आपको 9 मंथ का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 9 महीने आपको मदर पे फोकस करना है, मदर को खुद अपने आप पे फोकस करना है, ताकि उसका बच्चा है अच्छे से ग्रो करे अंदर। आपको बहुत छोटी सी बात नहीं पता होगी जो कि प्रूवन है बहुत सारी स्टडीज में, कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं, वो एक सीजरियन बॉर्न बेबी होते हैं, तो जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है उसका इम्यून सिस्टम, उसका इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होता है। दैट्स इन प्रूवन थिंग। हमें इस एंगल पर भी काम करना चाहिए कि आजकल पेरेंट्स अक्सर फैमिली प्लानिंग करती नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी की प्लानिंग होती ही नहीं है, उसको कई सालों पहले से आपको अपने आप को तैयार करना है ताकि आप एक हेल्दी बच्चा समाज को दे सकें। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद देखते हैं कि शुरू का जो 6 महीने का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पीरियड में बच्चे का सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नींव भरती है, वो भरती है, चाहे इम्यूनिटी का हो, चाहे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो, चाहे उसका शारीरिक विकास हो। उस समय 2 चीज़ें होती है बच्चे का, एक तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, तो बच्चे को बाहर की बीमारियों से बचाना भी है हमको, और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको पहली वैक्सीन्स कहते हैं, वो है माँ का दूध। माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टडीज़ में ये प्रूवन हुआ है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो अक्सर बीमार नहीं पड़ते हैं। माँ का दूध केवल उसी समय पेट भरने के लिए नहीं होता है, बल्कि 100 साल तक के लिए, लाइफ लॉन्ग बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं आज के टाइम में, जैसे कि एलर्जी है, अस्थमा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारी कैंसर्स हैं, इन सब से आपको बचाना है बच्चे को, तो सिंपल है कि बच्चे को 6 महीने माँ का दूध पिलाया जाए। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव मदर फीड, मींस माँ के दूध के अलावा आपको सपने में सोचना भी नहीं है कि कोई एक बूंद भी ऊपर से कुछ देना है। तो ये हमारा 6 महीने तक का टाइम हो। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फिर से स्क्रीन अंदर आ जाती है, तो उससे वहाँ आपको बचाना है। 6 महीने के बाद माँ का दूध आपको देना है, किसी और की माँ का दूध आपको देने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा 6 महीने का होता है, अक्सर माँ क्या करती है कि उसको गाय भैंस का या डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर देती है, तो उससे आपको बचना है। आप उसको खाना देना स्टार्ट करिएगा, माँ का दूध चलने दीजिए 2 साल तक के लिए, साथ साथ में उसको खाना देना स्टार्ट किए। तो इस तरीके से हम बच्चे को 2 साल तक डेवलप कराते हैं। उसके बाद फिर आपको हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, हम सब जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मम्मी को बिजी लाइफ स्टाइल हो गया है, सबको शॉर्टकट चाहिए, इतने सारे बेबी फूड आ गए, इसकी इंडस्ट्री देख कितनी बड़ी हो गई बेबी फूड की, एंड देर ऑल प्रोसेस फूड, दे आर ऑल जंक फूड, एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस, दे प्रमोट ओबेसिटीज, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एडिक्शन होता है। अगर आपने कभी एक बार कुछ जंक फूड ले लिया, आपको घर का खाना बच्चों को अच्छा लगेगा ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को वो जंक फूड कभी भी, क्योंकि बहुत हाई शुगर होता है उनके अंदर, बहुत हाई सॉल्ट होता है, और जैसे ही बच्चा वो खाना खाने के बाद फिर घर का खाना खाता है तो उसको वो किक नहीं मिलती है, उसके ब्रेन में वो जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है, तो बच्चा फिर घर में खाना खाता ही नहीं है। तो इस तरीके से जैसे बच्चा और बड़ा होता है उसके बाद आपको बच्चे को जितना हो सकता है उतना प्ले टाइम देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ जब स्कूल जाने लगे तो आपको बच्चे को अच्छा प्ले टाइम देना चाहिए, इससे बच्चा स्क्रीन से ही बचेगा और उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। बाकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए मैडम कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें इसमें?
1: जी ज़रूर जी, बताइए कि जी कि कैसे बच्चों के, ये तो उन्होंने बताया डॉक्टर तोमर ने, शारीरिक विकास कैसे करें, आप हमें बताएं कि मानसिक विकास बचपन से बच्चे का कैसे करें कि जिससे वो बड़ा होते होते प्रॉपर उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाए।
2: हाँ जी, देखिए जैसे ही बच्चा आ गया, बाहर आ गया जैसे बच्चा, तो उनके पेरेंट्स को उनको पार्क में ले जाए, फिर पार्क में जैसे जाएंगे तो पेड़ पौधों के साथ जब रहेंगे बच्चों, वो अलग ही एक नेचर से इंट्रोडक्शन होएगा बच्चों का। सो ऐसे करते करते थ्रू आउट एवरी डे एक पार्क का हैबिट बनाइए, तो बच्चा थोड़ा बड़ा होएगा, खेलेगा, नंगे पैर पार्क में चलेगा, ग्रास के साथ उसका ग्राउंडिंग होएगा, तो जो ग्रास के साथ उसका पैर में चलने से वो जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट लेवल का होता है। फिर बचपन से ही ट्राई करने के लिए कि योगा करें बच्चे थोड़ा।

0: सा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन मेडिटेशन के रूप में नहीं, साइलेंस प्रैक्टिस करें, बोले कि थोड़ा थोड़ी देर शांत रहो। तो ये शुरुआत कैसे करेंगे, पहले 5 मिनट से करेंगे, एक हफ्ता 5 मिनट किया, 2 हफ्ता 10 मिनट किया, तो जब बचपन से ही करेंगे बच्चे तो उनका आदत लग जाएगी। फिर घर में देखेंगे कि प्रेयर्स हो रहे हैं, पूजा पाठ होता है, तो पूजा पाठ से भी शांति मिलती है, जो इसेंस का जो खुशबू आता है उसमें भी एक आराम मिलता है नसों को, नर्वस सिस्टम को। फिर हम आते हैं, जैसे मैं साइको न्यूरोबिक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ, वो है हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन। तो जैसे मैंने बोला, बचपन से ही थोड़ा थोड़ा करके साइलेंस प्रैक्टिस किया, फिर मेडिटेशन किया, फिर हाई लेवल पे गए। तो जब जब जितना आप मेडिटेशन करोगे, साइलेंस प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका नर्वस सिस्टम कूल होएगा और आप झगड़ा नहीं करोगे बड़े होके। आजकल क्या होता है, रोड रेजेस होते हैं, रोड रेजेस में क्या होते हैं, झगड़ा अशांति शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज़ नॉर्मल, बट ये नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए घर का माहौल एक उचित देने के लिए माँ बाप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है।
1: जैसे अभी आपने कहा कि कोई इंसिडेंट हो गया, झगड़ना शुरू करते हैं, हाँ, इसी से रिलेटेड एक मैसेज हमारे पास आया है। ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, आई एम फ्रॉम गैंगटॉक, हाउ टू कॉम्बैट द टेम्पर टेंट्रम एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट।
0: हाँ, इसमें मैं अच्छी तरह बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने अच्छी तरह थेरेपी में मतलब ठीक किया है कुछ बच्चों का। देखिए, जैसे ही बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है, छोटा बच्चा भी बहुत हाइपर होता है, ऐसा नहीं कि सर बड़ा बच्चे होते हैं, तो जैसे ही हाइपर हो जाते हैं तो एकदम पूरा माहौल शांत करते। ये नहीं कि पेरेंट्स उसी टाइम ही बच्चों को सब कुछ सीखते, नहीं, वो वेट करे जब बच्चों का क्रोध शांत होएगा। देखिए, एक थॉट जब आती है, वो थॉट शरीर में 3 घंटे से पहले नहीं जाती है, और वो थॉट शरीर में 60,000 से लेके 2 लाख तक थॉट्स पर डे एक इंसान को आता है। तो जब सोचिए, जब क्रोधित बच्चा या कोई भी क्रोधित जब होता है, तो वो कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है वो थॉट प्रोसेस। तो इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि शांति से सुलझाएं। पहले भी मैंने बोला कि कहानियों के माध्यम से उनको समझाएं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाएं, लेकिन समझाना ज़रूरी है, लेकिन उस समय नहीं, थोड़ी देर बाद।
1: लेकिन उसके लिए माँ बाप को भी शांत रहना जरूरी है। कई बार होता है पेरेंट्स भी रिएक्शन कर जाते हैं, वो भी उनको डांटने लगते हैं। इस पर हम और भी बात करेंगे, हाँ, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ जी, पहले तो आप तीनों साहिबान को नमस्कार और आभार।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: जी, मेरे 4 सीधे साधे भोले भाले सवाल हैं और एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश।
1: हाँ जी बताइए।
2: तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप एक मुकम्मल परिवार किसे कहेंगे, क्योंकि कई फैमिली में 2 ही लोग रहते हैं, कई में 4 रहते हैं, कई में 8 रहते हैं, कई 15-20 भी रहते हैं, कुटुम्बदर भी अच्छी खासी रहती है। तो आप एक कम्प्लीट परिवार की परिभाषा मतलब किसे कहेंगे, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल की होता ही है कि बच्चे माँ बाप तो बिल्कुल बिंदास बेखौफ होके बात करते हैं, कोई भी उन्हें रिक्वेस्ट करनी है, कोई डिमांड करनी है, और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ उनको उनके सीनियर से कुलीग्स मिलते हैं, तो वहाँ वो भीगी बिल्ली कायर बुजुर्ग बन जाते हैं, तो उन्हें मानसिक रूप से कैसे स्ट्रांग किया जाए। तीसरा सवाल मेरा ये है कि बच्चे माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं बच्चों बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हाथ पैर छूने चाहिए, उन्हें ब्लाइंड फेक ब्लाइंड फॉलो करना चाहिए, उनके सामने जुबान नहीं खोलनी चाहिए। अब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ सीनियर्स में उनकी मजबूरी का शराब का फायदा उठाते हैं, इस पर हमें क्या करना चाहिए। चौथा सवाल मेरा ये है कि इन दिनों देखा जा रहा है हिंदुस्तान में कि संयुक्त परिवार जो है वो एकांकी परिवार में कन्वर्ट हो रहे हैं, तब्दील परिवर्तित, तो इसकी वजह क्या है। और पांच मेरा आखिरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश आप सबों से कि जैसे बड़े बुजुर्ग प्यार के भूखे हैं ना मान सम्मान के, ऐसे बच्चे भी हैं प्यार के भूखे मान सम्मान के, तो उन्हें मान सम्मान देना और उन्हें प्यार करना सीखे, क्या कहेंगे आप, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: तो डॉक्टर तोमर, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले पूछा था कि अच्छे परिवार की डेफिनेशन क्या है, किसे कहेंगे?
3: देखिए, शायद आपने
1: जैसे हमारा, हाँ, इंटरनेशनल
3: हमने शुरुआत ही वहीं से करी थी कि परिवार क्या होता है बेसिकली, जहाँ स्नेह संरक्षण उत्तरदायित्व और संस्कार होते हैं। संस्कार में जैसे आपने बोला वो सब कुछ आ जाता है। जब संस्कार की बात करते हैं तो जैसे बाहर बच्चे जाते हैं तो वो बिगी बिल बन जाते हैं, या वो कैसे बिहेव करेंगे या कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमारे एक उसमें भावनात्मक उसमें आती हैं, ये यही वैल्यू हमें सीखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें सिखाना ये परिवार

0: जिम्मेदारी होती है। दूसरा आपने बोला कि रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों की भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। डेफिनेटली बच्चे को भी उतना ही रिस्पेक्ट चाहिए होता है जितना बड़ों को चाहिए होता है। तो वो बच्चों को हमें सिखाना है कि उन्हें कैसे करना है, और बच्चे को बहुत ज़्यादा हम करेक्ट नहीं करें। दिन भर हम बच्चे को करेक्ट करते रहते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बल्कि उसको जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो उससे आप सवाल करिएगा, ताकि उसका अपर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, जो ब्रेन में जो कॉर्टेक्स होता है उसका एक इन्वॉल्वमेंट होता है। अदरवाइज़ क्या है कि दिन भर बच्चा वही सुनता है, आप ये मत करो, आप वो मत करो, तो उसका भी स्पाइन लेवल पर रिप्लाई आने लगता है फिर वो। तो उस तरीके से करना है। संयुक्त परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, इंसान आजकल जो है वर्टिकल ग्रोथ कर रहा है। वर्टिकल ग्रोथ मतलब ऊंचाइयों पर जा रहा है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वो आसपास की चीज़ें फिर दिखाई नहीं देती हैं, तो वही हो रहा है। ये सही समय कि हमको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना चाहिए, हमको अपने आसपास देखना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में देखना चाहिए, इससे हमारी सोशल हेल्थ अच्छी होती है, लोगों से मिलना चाहिए। बल्कि दिल्ली जैसे शहरों में, मेट्रोज में तो हालत ये है कि ऊपर वाला नीचे वाले को जानता ही नहीं है कि वो कौन रहता है। इससे डेफिनेटली हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ये सोशल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ।
1: किया जी, जैसे इन्होंने एक ये भी पूछा था कि बच्चे घर में तो बिंदास डिमांड करते हैं लेकिन बाहर जाकर बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, तो ऐसे में उनका मानसिक विकास कैसे किया जाए?
2: देखिए, ये ह्यूमन नेचर है कि बाहर दिखाना है कि हम बहुत ही सही है, और घर के अंदर वो अपने आप को नॉर्मली बिहेव करते हैं, और उनका नॉर्मल है कि वो जिद करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज़ द नॉर्मल थिंग। बट बाहर तो दिखाना ही है कि हम इतने अच्छे हैं। तो ये सब कुछ शुरुआत होती है वो घर से ही, जैसे आपका घर का फैमिली का प्रोग्राम।
1: नहीं, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो बाहर नहीं बोलते।
2: हाँ,
1: घर में तो बोलते रहते लेकिन बाहर बिल्कुल चुपचाप रहते। तो वो बाहर भी जैसे आजकल होते छोटी फैमिलीज हैं, ठीक है, बच्चे पोजेसिव हो गए, रिजर्व हो गए, बाहर उतने सोशल नहीं है, तो उनको सोशल कैसे बनाया जाए, वो ये पूछना चाह रहे हैं।
2: हाँ, तो उनकी पर्सनालिटी क्लासेस होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होते हैं, वो बच्चों को डालना चाहिए। फिर काउंसलर्स होते हैं, उनके थ्रू से बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है। फिर हमारे जैसे NNP मास्टर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके थ्रू से हो सकता है। लेकिन एक प्रॉपर हेल्प चाहिए कि अगर देख रहे हैं कि बच्चे कॉन्टिन्यूसली ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो घर पर नहीं हो पा रहा है, तो एक प्रोफेशनल उनको हेल्प लेना चाहिए।
1: लेकिन बच्चों को रिजर्व टू सोशल बनाने के लिए पेरेंट्स उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं?
2: पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे ना, स्कूल के टीचर्स से मिल के, उनसे बात करके, उनसे डिफरेंट टाइप के काउंसलिंग लेके, फिर वो भी इन्वॉल्व होंगे और फिर डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल हेल्प लेंगे।
1: एक श्रोता है हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मैं उत्तराखंड से रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। दोनों डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार ठाकुर साहब।
1: नमस्कार। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा प्रश्न ये था, मैंने अपनी बिटिया के बारे में पूछना था।
1: जी बताइए।
3: जैसे मानसिक रूप का उससे आज ये प्रोग्राम था, तो ये मानसिक होता है या ऐसा, जैसे बिटिया हमारी 24 साल की है तो उससे पहले भी स्कूल से कि ये ऐसे हवा लग गए करके हो जाती थी, जैसा मोर्चित हो जाती थी, ये बेहोश टाइप की
0: जी,
3: या कभी कुछ जैसे डेथ केस हुए थे तो उसमें भी वो बेहोश हो जाती थी, जैसे कभी पूजा पाठ करती है तो कभी कभी उसमें उसको हो जाती है, बेहोश टाइप की हो जाती है, कि तब मानते हैं ना ये घर का कोई ऐसा कुछ दोष हो या कुछ ऐसा, या कुछ हवा या कुछ ऐसा, तो ये मानसिक होता होगा या क्या होता होगा, इसका तो समझ में नहीं आया।
2: मैं बताती हूँ, ये दोष वोष कुछ नहीं होता है, ये जो अफेक्ट होता है, शॉक मिलता है किसी की डेथ के वजह से, वो माइंड में चलता रहता है। जितना माइंड में चलेगा वो उतना ही दिखता, बड़ा बड़ा दिखता रहेगा। तो आपकी बेटी को थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प चाहिए इस वक्त, ताकि वो इस चीज़ से निकल आए। जैसे ही वो निकल आएंगे फिर वो घर के माहौल में फिर संभल जाएंगे, बट अभी के लिए आपकी बेटी को थोड़ा सा डॉक्टर का या किसी का, काउंसलर का, साइकोनोरोबिक्स होए या साइकोपैथ होए, उनसे हेल्प चाहिए।
1: इस पर डॉक्टर, इस पर क्या जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे कई बार होते हैं कि स्कूल में पढ़ाई का लोड हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, कुछ बच्चे होते हैं वो इमिडिएटली हैंडल कर लेते हैं।
2: हाँ जी।
1: कुछ होते हैं उसको एक दिन सोचते रहेंगे, कुछ होगा हफ्ते भर सोचते रहेंगे, कुछ महीनों सोचते रहेंगे।
2: हाँ जी।
1: उसकी वजह से वो चीज़ सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाती, ना ही उसका रिजल्ट मिल पाता।
2: नहीं,
1: तो ऐसे में तो उन अलग अलग बच्चों के हिसाब से क्या करना चाहिए?
2: देखिए, कुछ तो अपने में ही होता है, कुछ तो तूफानी बच्चे होते हैं, कुछ स्लो डेवलपमेंट करते हैं, तो वो बच्चे टू बच्चे डिफर करते हैं। लेकिन हम उन बच्चों को डिफरेंट, जैसे कि स्पेशल क्लासेस के थ्रू टीचर्स उनको हेल्प करेंगे, और माँ बाप को चाहिए कि

0: टीचर से बात करके, उनसे काउंसलिंग करके उन बच्चों को नॉर्मलाइज किया जाए। जैसे ही करेंगे तो देखेंगे कि बच्चे ठीक हो रहे हैं और नॉर्मल रिजल्ट्स आने लगे।
1: इस पे डॉक्टर तोमर आप क्या कहेंगे?
2: मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें कि देखिए हमारा देश बहुत बड़ा है और हर किसी के पास ना तो साइकेट्रिस्ट है ना ही डॉक्टर्स हैं, बल्कि आप देखें छोटे शहरों में तो हमें बेसिक किसी भी चीज़ के लिए, समाज को चलाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ये सारी चीज़ें आज हम इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने वो जो हमारा पुराना कंसेप्ट था वो खो दिया। तो बच्चों को हमें एक सोशल लाइफ में करना, जैसे कहते हैं बच्चा, कुछ बच्चे बहुत वो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत से बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बचपन से बच्चों को सिखानी है। जैसे बच्चा होता है अपने परिवार में, दादा दादी नाना नानी भाई बहन जितने भी हैं उन सबसे मिलवाइए, उनसे बात कराइए, बच्चा अपने आप ही होने लगेगा। दूसरी चीज़ जैसे कि बहुत से बच्चे प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते, हम सब कुछ बच्चे को सिखा देते हैं ये खा लो वो खा लो ऐसे कर लो पढ़ाई कर लो, लेकिन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है ये हम लोग बच्चों को नहीं सिखाते।
0: कि डिफरेंट स्पून फीडिंग करते
2: हैं, यस स्पून फीडिंग नहीं करना है बच्चे को, अपने आप इसको नर्चरिंग केयर कहते हैं बेसिकली हम, कि बच्चे को इनिशियली 5 ईयर्स तक तो एक्सपीरियंस करने दीजिए, उससे बच्चे को सीखने दीजिए, आप कुछ मत सिखाइए। आपने देखा होगा बेंगलोर में एक इंसिडेंस हुआ था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा था, शादी के बाद सुसाइड कर लिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, इमोशनल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, सोशल प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना है, इन चीज़ों पर बच्चे को तैयार नहीं किया। तो बच्चे को संस्कार से केवल एजुकेशन नहीं देना है आपको, बल्कि इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार करना है कि हाउ टू हैंडल द डिफरेंट सिचुएशंस।
0: कभी कभी हैंडल मतलब जो होता है ना, उसी सिचुएशन को हम सिखाए नहीं सकते हैं, वो अपने आप ही हैंडल करना होता है, और वो शुरुआत ही होता है नींव से। अगर नींव मजबूत होए तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकेगा।
1: लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी काम होगा तो उनको स्ट्रेस हो जाता है जिसके कारण वो नहीं कर पाते।
0: सब
1: तो हाँ किया जी, वो कैसे करें कि क्योंकि बच्चों को बचपन से देखा जाए तो स्कूल भी जाना है, उनको खेलना भी है, उनके पास अपने ही बहुत काम है, तो वो हर चीज़ को आराम से हैंडल कर ले। उसके लिए क्या करें, पेरेंट्स क्या करें और बच्चे क्या करें, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: नमस्कार, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका।
3: हाँ मैडम, सवाल ये है कि अगर आजकल के जो मदर हैं वो उनका खुद का ही लाइफ स्टाइल थोड़ा ऐसे ही है, डिसिप्लिन नहीं है ना, हेल्थी हाइजीन का है, बच्चा भी अगर देर से उठता है और देर से सोता है तो मतलब बच्चा भी है, मतलब ब्रेस्ट फीड पे भी है, तो क्या है, बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बच्चे आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, जो यंग मदर्स एंड फादर है, अब ये है कि वो बड़ों की एडवाइस पर तो उनका कोई वो लेते नहीं है, मतलब दे डिपेंड ऑन इंस्टा रील्स एंड पता नहीं कहाँ कहाँ से एडवाइस ले लेते हैं वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो ये मतलब बच्चे के लिए कितना मतलब डेवलपमेंट में मतलब बाधा कर सकता है?
1: जी पहले डॉक्टर तोमर आप बताइए कि फिजिकल डेवलपमेंट पे कैसे बाधा करेगा?
2: दो चीज़ हैं सर आपने जो बताया है, कि पहले तो ये कि माँ है आजकल रील देखती हैं या इंस्टा पे है, तो एक चीज़ है हमारे यहाँ समाज में कभी भी पहले ये बैन हुआ करता था कि कोई भी किसी भी टॉपिक पर एडवाइज नहीं दे सकता, लेकिन अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जब से आई है तब से कोई भी कुछ भी किसी भी चीज़ पे ज्ञान देने के लिए रील बना लेता है, उसे कभी भी फॉलो निकलना है, खासकर हेल्थ के बारे में आपको बिना एक्सपर्ट के सलाह के नहीं लेनी है। जो माँ है वो भी किसी का बच्चा रहा होगा, तो जब हम समाज को इस तरीके से तैयार करेंगे, अच्छे वैल्यूज देंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो भी कल को जा करके माँ बनेगी तो उसको डेफिनेटली वो पता रहेगा। और जहाँ तक स्क्रीन का टाइम है, बच्चों की हेल्थ पर असर तो पड़ता ही है, प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, बच्चे की भी नींद पूरी नहीं हो रही है, और लाइफ साइकिल इज़ इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे सो के और 10 बजे उठ रहे हैं तो आपका हेल्दी स्लीपिंग हो गया, ये नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्लीपिंग पैटर्न एग्जैक्टली वैसे होना चाहिए जैसे कि पहले होता था। जो लाइफ है हमारी वो सन के अराउंड मूव करती है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स के लेवल हैं वो उसी के हिसाब से अप एंड डाउन होते हैं, तो आपको वो लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करनी है।
1: इस पर क्या जी आप क्या कहेंगी?
0: हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाली थी डॉक्टर साहब जी जो बोला कि ये बच्चे आजकल टाइम से नहीं सोते हैं और बहुत रात तक लैपटॉप पे काम करते हैं, इससे क्या होता है जो वो ब्लू लाइट्स आती है आँखों में स्क्रीन से, वो आपके सर्कैडियन साइकिल को अफेक्ट करता है। सर्कैडियन साइकिल क्या है? सोना और जगने का साइकिल। अब जब बच्चा 4 बजे सो रहा है, सपोज़ रात के 4 बजे सो रहा है, तो सुबह उठते हुए मुश्किल होगी, और जैसे ही मुश्किल होगी सुबह उठते हुए उसको नींद नींद ड्राउजीनेस फील होगा थ्रू आउट द डे, बट उसको कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, काम तो करना है, तो ओवर द पीरियड वो सुस्त बनता जाएगा, लेजी लथार्जी आता जाएगा। तो ये माँ बाप को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है कि बच्चे तुम टाइम से सोओगे, टाइम से खाओ।

0: होंगे पहले ज़माने की तरह, तो ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करेंगे तो ही बच्चे ठीक हो पाएंगे। तो माँ बाप पे फिर आ जाता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की आजकल बहुत ज़रूरी है। और इंस्टा पे तो आजकल सारे टाइप के रील्स ऐसे होते हैं कि एडिक्शन हो जाती है।
1: बिल्कुल
2: जी, इसी पर एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं, सभी को मेरा प्रणाम। प्रेगनेंसी के दौरान माँ के लिए हेल्दी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे कि माँ एवं बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। हेमचंद्र भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य, उत्तराखंड।
1: देखिए सर, लाइफ को चलाने के लिए आपको कोई डाइट चार्ट की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी कल्चर में था, आपको सबको पता होता कि हेल्दी फूड क्या होता है। स्वस्थ खाना खिलाइए, अच्छा खाना खिलाइए, नेचुरल खिलाइएगा, प्रोसेस फूड नहीं देना है, जंक फूड नहीं देना है, और जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल सब्जियां हैं, वो अच्छे से खिलाइएगा और मानसिक रूप से उनको जो है सपोर्ट कीजिएगा, तो आपका बच्चा हेल्दी होगा।
2: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, अगर बच्चे घर पर तो दंगा करते हैं लेकिन बाहर जाकर और ज़्यादा दंगा करते हैं और डिमांड करते हैं मोबाइल दो, इसके लिए क्या किया जाए, प्लीज़ कृपया निर्देशित करें कि हाजी क्या कहेंगे। ये लिखा है डॉक्टर शिवराज सिंह ने।
0: बच्चे की उम्र क्या है, ये बहुत ज़रूरी है।
2: ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो अगर हम ले, ये बच्चा है तो मेरे ख्याल से 10
1: डेफिनेटली
2: बच्चा 10 से
1: 15
2: साल, हाँ कोई भी हो सकता है।
0: क्योंकि मोबाइल, छोटे बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दे, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करें
2: कि दंगा करते और बाहर जाके और करते हैं,
0: हाँ तो उनके जिद पे ना आए ना, यही तो है पेरेंटिंग।
1: बच्चे को जो है आपको शुरू से ही कंट्रोल करके चलना है, और इससे वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बच्चे को आपको पैम्पर नहीं करना है, आप बच्चे को संस्कार दे रहे। एक सिंपल सी, एक छोटी सी, आपको हमेशा याद रखनी बच्चों के मामले में कि बच्चा आपका कच्ची मिट्टी होता है,
0: ठीक,
1: और आप जो है कुंभकार हैं, आप कैसा शेप देना चाहते हैं, कहाँ आपको अपने हाथ को टाइट करना है, कहाँ आपके हाथ को लूज करना है, कितना सुंदर शेप आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया है, पेरेंट्स कच्ची मिट्टी हो गए हैं,
0: ठीक,
1: बच्चे उसको मोल्ड कर रहे हैं, जिद किया तो वो तो बच्चा आपका एडिक्टेड हो चुका है। बहुत से बड़े अडल्ट होते हैं, वो ड्रग्स के लिए जिद करते हैं, कोई ड्रिंक के लिए जिद करता है, तो अल्टीमेटली आपको समझना होगा।
2: आज ही जैसे कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है, तो हम उस पर बात करें, पेरेंट्स जहाँ इतना बिजी रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो हफ्ते में एक दिन क्या उनको बच्चों के साथ बिताना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक्टिविटी करना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है शारीरिक विकास के लिए, डॉक्टर तोमर आप बताइए।
1: देखिए अक्सर ये बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, और बहुत परेशान होते हैं अक्सर मम्मियाँ, तो उसके लिए सिंपल है कि जब भी आप बच्चों को खाना खाते हैं, आप जो खाना खा रहे हैं वही बच्चों को खिलाना है, और अक्सर फैमिली फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बिल्कुल डिजिटल फ्री एरिया होना चाहिए जिसमें आपको बच्चे के साथ बैठ के खाना खाना है। चलते चलते मैं एक आपको बड़ा छोटा सा मंत्र दे के जाता हूँ, क्योंकि एक परिवार होता है, परिवार सुखी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, तो उसके लिए हमारे बहुत पहले से एक कंसेप्ट हुआ करता है परिवार के लिए क्या ज़रूरी है, कि यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ सुख समृद्धि आती है, उसका मतलब ये है। तो घर में जो आपके लेडीज हैं, जो महिलाएँ हैं, बच्चों की माँ हैं, दादी हैं, आप उनको प्रॉपर इज्जत देंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, झगड़े कम होंगे, खुशियाँ रहेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे।
2: और क्या जी, आप क्या मैसेज देंगे जाते जाते हमारे श्रोताओं को, जिससे कि पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है और बच्चों के लिए, जिससे उनका मानसिक विकास सही ढंग से हो।
0: हाँ जी, बच्चों के लिए है कि बच्चे जो माँ बाप बोले वो करें, और पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों को एक्सेप्ट करें अनकंडीशनल, उनकी सुने, उनके साथ रहें, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ साथ सारे कार्य करें ताकि बच्चे भी खुश रहे, और जादू की छप्पी बहुत ज़रूरी है।
2: जी हाँ, इसे ही कहते हैं फैमिली बॉन्ड। अगर फैमिली बॉन्ड अच्छा होगा, आपस में प्यार होगा, तो सब आपस में खुश रहेंगे। श्रोताओं, अगर परिवार में संवाद, समानता और सहयोग हो, तो हर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर आगे बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें यही संदेश देता है कि बच्चों का बेहतर कल एक बेहतर परिवार से शुरू होता है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे हमारे दोनों विशिष्ट अतिथियों डॉक्टर MS तोमर और KR चटर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
2: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल ID है healthairdelhi@gmail.com। जागरूकता ही बेहतर स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है, और यही संदेश लेकर आता है आपका अपना कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर रूबरू होंगे नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी

वालो बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालो अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। मां कसम सुनते रहिए 102.7 एफएम रेनबो।

0: वेलकम बैक जी 102.7 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम चल रहा है युववाणी सेगमेंट चल रहा है जी सिनेमा मेरे नाल आरजे शिवम ते
1: मैं आरजे नेहा दोस्तों तुसी हुने जिहड़ा गाना एंजॉय कीता है काफी एंटरटेनिंग सी वैसे
0: गाने दे विच जे असी देखिए बड़े नाम वरते गए है मेरा मखणा मेरा सोना मैनूं लगदा घर दे वी सानूं इस कुछ नामां नाल बुलांदे ने हां तुहानूं किस नाम नाल बुलांदे
1: मैनूं तां इदां लगदा ना कि मेरे घर दे मूड दे अकॉर्डिंग बुलांदे जदों उहनां नूं वैसे तां नॉर्मली मैनूं मेरा नाम लैके नेहा ही बुलांदे पर जदों उहनां नूं गुस्सा आंदा है कुछ भी होर कह दिंदे है जो उन्होंने प्यार आंदा तो कुछ होर के बुला देंगे मतलब कोई पर्टिकुलर नाम ही नहीं है सिर्फ

0: भी जुड़ सकते हो।
1: ते करना कुछ ज्यादा थोड़ी है, बस डायल करना है 0181-143-174 ते बस सानू घुमान लेके जाना तुसी किसी वधिया दी जगह ते साडे लिसनर्स नु भी नाल ले ते एंजॉय करो एक प्यारा जिहा ट्रैक। फिर मिलदे आपां।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन मिठी जी गुड इवनिंग दोस्तों। बैक टू बैक एक बार फिर स्वागत है, यानी कि पहला कल भी मैं थोड़े नाल इस प्रोग्राम विच शामिल सी, अज फिर थोड़े सामने मैं आ चुके हाँ जी। हाँ, लैके हाजिर हो चुका जी प्रोग्राम फिल्मी दुनिया। अज फिल्मी दुनिया के एक ऐसे सितारे बारे गल करांगे जिन्हें बहुत सारे हुक स्टैप दिते, बहुत सारे ऐसे गाने दिते कि सदाबहार गाने, मतलब है वो एक्ट्रेस ने बट यस उन्होंने जिन्हों गाणियां उत्ते अपना जिहड़ा ठुमका लगाया या फिर कह लो कि ऐसे डांस मूव किए ने, किन्ने साल हो चुके ने पर अज भी निके निके बच्चे सियाने बुजुर्ग सारे उन्होंने डांस स्टैप कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आवाज़ विच नरमी, मुस्कान विच जादू अते डांस विच बेमिसाल अदा। जी हाँ, अज का खास प्रोग्राम समर्पित है बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित जी नूं। जी हाँ, माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 नूं महाराष्ट्र के मुंबई शहर विच होया। तो अज उन्हां बारे गलबात करांगे, बहुत सारिया गल्लां ने उन्हां दी परसनल जिंदगी बारे, फिर मूवी करियर बारे, फिर होर भी जो भी उन्होंने कुछ किया। सो आओ सब तो पहला इंजॉय करते हैं उन्हां दी ही फिल्म का एक बड़ा ही फेमस ट्रैक

जी हाँ, माधुरी दीक्षित जी नू बहुत लोग प्यार करते हैं कि मैं हुणे जस्ट अनाउंसमेंट ही की कि अगर प्रोग्राम सुनने वाले भी माधुरी दीक्षित का कोई पर्टिकुलर गीत सुनना चाहते ने तो मैनू सीधा मैसेज जड़ा है वो आ चुका है। लिखा है गीतकार संगीतकार ये बुलडाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से, सीधा ही जहाँ की वो हैं महाराष्ट्र से उनका मैसेज आ गया है। सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल और ये वड़सिंगी बुलडाना से अमोल मानकर, शुभताई मानकर, शलोक दीपाली। ये मैंने ऐसे इसलिए बोला था कि थोड़ा सा मैं देखूं कि भाई प्रोग्राम अभी भी सुना जा रहा है या सीधा रात की फरमाइशी प्रोग्राम में लोग जुड़ते हैं, बट नहीं, बड़ा अच्छा मेरे को लगा, स्पेशली जब इन्होंने मैसेज लिखकर भेजा कि 100 डेज। इस फिल्म के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, ये जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित जी की बड़ी प्यारी फिल्म है जो कि

1991 में आई थी। सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी जो फरमाइश का गाना मैं जरूर प्ले करूंगा। इस तो पहला मैं दस दवा माधुरी दीक्षित जी के बारे कुछ ऐसिया गल्ला जिहड़ियां बहुते लोकी नहीं जानते। इस गल तो सारे वाकफ ने कि माधुरी दीक्षित जी एक ट्रेन कथक डांसर ने, पर बहुत घट लोग जानते हैं कि वह माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी जिहड़ी है वह कर रहे सी। इस तो अलावा उन्होंने पेंटिंग अते कुकिंग का भी शौक है। एक समा बॉलीवुड विच ऐसा आया जदों वह भारत की सब तो ज़्यादा वध फिल्मों दे विच फीस लैण वाली अदाकारा बन गई। इस तो अलावा मशहूर चित्रकार एम एफ हुसैन उन्हां दे बहुत वड्डे प्रशंसक सन। सो यह गल्लां शायद बहुत सारे लोगों नहीं पता होणगियां, पर अज दे प्रोग्राम दे विच क्योंकि अज उन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी है, सो अननोन फैक्ट्स भी असीं शेयर करते हैं। चलो जी, जिवें कि दोस्त ने फरमाइश की कि 100 डेज का गाना जिहड़ा है माधुरी दीक्षित जी का लता मंगेशकर जी की आवाज़ के नालों नाल एस पी बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज़ के प्ले करते हैं थोड़े सारे लिए।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों। जिंदगी जिंदाबाद। रात के 8:03 हो चुके हैं। FM रेनबो से तुम प्रोग्राम हूँ इंजॉय करोगे, जिसका नाम है जी पब्लिक मंच। एंड इस प्रोग्राम में तुम इंजॉय करोगे अपने दोस्त मोहित रूबल के नाल। तो जनाब, अज के प्रोग्राम का खास मुद्दा है कि पहली गल तो अज अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस है। सो परिवार की परिभाषा जी समय समय से चेंज हो रही है। परिवार पहले अं पूरे पिंड नूं भी परिवार कह दीदा सीगा, वैसे तो आप देश नूं भी परिवार कह दिंदे सी, हजे भी किते किते कहिंदे होवांगे, पर मनदे नहीं आ, बिल्कुल मन ही नहीं रहे। दूसरी गल, पिंड नूं कह देना, शहर नूं कह देना, अपने पूरे इलाके नूं कह देना एंड पूरे महल्ले नूं कह देना, लागे छागे अपने शरीकों नूं कह देना, पर हुण शरीक वर्ड आ गया ना, हुण तां शरीक कहना शुरू करता कि नहीं चाचे ताए नहीं है, तुहाडे शरीक ने। सो बहुत सारियां चीज़ों के ना एक ऐसी मिसकम्यूनीकेशन आ चुकी है, या फिर ऐसा दूरियां जड़िया ने आ चुकिया ने कि परिवार की परिभाषा जी बदल गई है। आई नो कि महीने डेढ़ महीने पहला भी कुछ ऐसा गलों के उपर प्रोग्राम असं किया, पर अच्छा प्रोग्राम खास दिन के उत्ते है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। तो तुम 081-23-42-174 जोड़ा है नंबर डायल करके प्रोग्राम के शामिल होना है। तो गल करनी है कि जो है जोड़े मुल होंगे ने, मुल मतलब कि परिवारिक मुल, या कह लो कि सोहनिया आदत, या फिर कह लो कि जोड़े संस्कार ने, वो जोड़े घटते जा रहे हैं परिवार के, उन्होंने कारण की है, या फिर जड़िया नवी चीज़ा आ गई ने, जिमें एक न्यूकलर फैमिली आ चुकी है, छोटी फैमिली जी है वो बन चुकी है। हूँ कि असी इनू ही मान रही है कि बई हाँ छोटिया फैमिलीस ही रहनगियाँ, या फिर वड्डिया फैमिलीस भी सोहनिया सी, हजे भी कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि कोई व्डे परिवार के रह रहा। सो जेकर किसी का बहुत व्डा परिवार है, वह भी सानू फोन करके दस सकता है कि तुसी किन्ने के जी हो, ते तुसी किन्ने सालां तो कट्ठे रह रहे हो, अगर छोटी मोटी गल हो भी जाती है तो किवें तुसी उसका सामना करते हो, तो किवें जड़ा एक प्यार है तुसी बनाई रख दियो। सो बहुत सारिया गल्लां जड़ियां हैं आपां हर एक दोस्त तो करांगे। मैं कोशिश करा कि वध तो वध जिहड़े दोस्त ने प्रोग्राम दे विच शामिल होण। बहुत सारे सवाल मैं लैके बैठा होया, अगर तुसी भी कोई गल अपने वालों भी करना चाहुंदे हो, मोस्ट वेलकम। नंबर 081-23-42-174 01-81-234-2174। सो मैं प्रोग्राम दे विच एक दोस्त आ ही चुके ने, उन्हां नाल सिद्धा गल करदे हां। हैलो जी, प्रोग्राम विच तुहाडा स्वागत है सर।
1: हाँ

हेलो हेलो, लगता दोस्त जिहड़े ने फोन मिला के ते बाद विच हेलो हेलो दा जवाब नहीं दिंदे। दया करो जनाब, आपां ही ते गल्लां करनी आ, तुसीं मैनूं जवाब नहीं दे रहे, तुसीं अपने परिवार दे विच की जवाब दे रहे होवोगे। ओके जी, सो इस बारे असीं गल करांगे। चलो एक गाने वाल वधदे आ, गाने तों बाद देखदे आ किहड़े दोस्त जुड़दे ने ते की लै के आउंदे ने प्रोग्राम दे विच।

0: सर, बहुत कुछ है।
1: बहुत कंपटीशन भी है, राइट?
0: यस।
1: ओके, अच्छा लगता कि जेकर सरकारा ने समय ते एक ऐसा रूल बनाया कि हम दो हमारे दो, जो कि चंगी गल भी सी, है ना, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: कंट्रोल करनी सी
0: बिल्कुल।
1: पॉपुलेशन, पर की हुण प्यार मुहब्बत दे लई भी कि सरकारा नूं इंटरफेरेंस करनी चाहीदी है, सरकारा नूं कुछ वखरा ऐसा करना चाहीदा जो कि साडे हथ दी चीज़ है, पर की हुण सरकारा ते या प्रशासन ते छड दईए, क्योंकि आपसी मुहब्बत प्यार वो भुलदा जा रहा है।
0: मेरे हिसाब के नाल सर, जो सरकार कह रही है कि हम दो हमारे दो, मेरे हिसाब नाल कितने कितने वो सही है।
1: बिल्कुल
0: अगर
1: सही है,
0: आप देखे जाइए कि जनसंख्या साड़ी इंडिया की बहुत ज्यादा है
1: राइट।
0: और रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है कि, और कंपटीशन ज्यादा पूछो ही ना कि कितना है।
1: राइट राइट
0: इसी करके मैं कह रहे हैं कि जेडी न्यूक्लियर फैमिली नो थोड़ा बुढ़ावा ज्यादा मिल रहा है अज की डेट विच।
1: ठीक है। मतलब फिर भी मैं कहूँगा कि वो भी न्यूक्लियर नहीं रह सकती, अगर तुसी की करो, मान लो कि दो बच्चे भी ने, दो भरा भी ने, तो वो कट्ठे ही रहन, वो भी अगों अड अड ना हो जाए, न्यूक्लियर दी होर निकी निकी फैमिली ने तुसी कर दो कि निका एक मुंडा अलग हो गया, दूजा मुंडा अलग हो गया, माँ प्यो अलग हो गए, एक परिवार तो तीन परिवार ते ना बनाओ,
0: बिल्कुल सर।
1: ठीक है ना?
0: सर मैं तो इवन यहो जी फैमिलीज नु भी जानदा है कि जड़े हुन आपा बोल रहे हैं ना कि गवर्नमेंट कह रही है हम दो हमारे दो, आज दी डेट भी चाहिए कि हम दो हमारा एक।
1: हाँ एग्जैक्टली
0: वो आजकल दे जो यूथ है जड़े नवे नवे पेरेंट्स बंदे ने वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वो दूसरा अपना चाइल्ड प्लान कर पाए।
1: राइट राइट राइट ठीक है यशु जी, तुहाडे नाल गलबात करके बड़ा चंगा लगा। मैं उम्मीद करदा कि अगों तो भी जिहड़े प्रोग्राम असीं पब्लिक मंच वर्गे जिहड़े प्रोग्रामां दे विच वक्खरे एक सीरियस टॉपिक लै के आने आ, तुहाडे वर्गे लोग बड़े जरूरी हुंदे ने साडे प्रोग्राम दे विच, कि क्वालिटी इनफॉर्मेशन एक चंगा योगदान जिहड़ा तुसीं दिंदे हो, सो थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू। सो लो जी, प्रोग्राम दे विच सुन सुने दोस्त जिहड़े ने सुन सुने थॉट्स लैके आ रहे ने, एंड एक अपना फस्ट हैंड एक्सपीरियंस, क्योंकि आप परिवारों के रह रहे ने, वो अपनियां गल्लां दस रहे ने, अपने तजर्बे जिहड़े ने दस रहे ने, बड़ा चंगा लग रहा है। प्रोग्राम नूं होर मैं कहांगा कि रिच कर रहे ने। चलो अगे वधदे आं, प्रोग्राम दे विच एक छोटा जिहा गीत सुणदे आं, गीत तों बाद दोबारा प्रोग्राम दे विच शामिल होंदे आं। जदों ही मैनूं कॉल आ गई मैं गाणा बंद करके कॉल चुक लैनी है, नंबर 0181 23 42 174, तुसीं फटाफट सानूं कॉल मिलांदे जाओ। मैं कोशिश करांगा कि अगले जिहड़े 21 मिनट साडे कोल बचे ने उहनां विच मैं घट्टो घट्ट 5-6 कॉलां होर लै लवां। फटाफट फोन मिलाओ 0181 23 42 174।
2: Diamond.

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों, जिंदगी जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, रात दे 9:03 हो चुके हैं, FM रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है जी दिल चाहता है। इस प्रोग्राम दे विच जिन्हें भी दोस्तों का जेड़ा भी दिल चाहता है कि वह हिंदी या इस पंजाबी फिल्म का कोई गीत जरा सुनना चाहते ने, वो प्रोग्राम दे विच शामिल होण। बड़ा सौखा जिहा तरीका है जनाब, तुसी सानू साडे वट्सएप नंबर 9855107 9855107 दे उपर तुसी सानू मैसेज भेजना है ते प्रोग्राम दे विच शामिल करांगा मैं। सो मैं बहुता समा नहीं लगावांगा, अज मैं कोशिश करांगा वध तो वध मैसेजेस लै के एक नवा रिकॉर्ड जिहड़ा है मैं बना देवां। जिन्हें भी तो सुन रहे ने जनाब, चलो 100 मैसेज भेज दिंदे अज्ज, 87 तो हो ही जांदे ने, अज 100 पूरा करदे आ। ठीक है जी, लो जी, सब तो पहला मैसेज आया जी पिंड हीरांवाली जिला फाजिलका दे पक्के स्रोता सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदू पार्वती, हिमांशु गुदारा। सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम दिल चाहता है लाइव सुन रहे हैं, रात को सारे काम निपटा के इस प्रोग्राम नाल जुड़ जाने हैं, आज भी कोई भी गीत जड़ा है सुना दियो। ठीक है जी, अगला मैसेज है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो महर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा मूवी धुरंधर ट्रैक जाइए सजना। जनाब आ वाला गाना तो साढ़े को नहीं पहुँचा होया, पर कोई होर गाना जड़ा है मैं जरूर सुना देना। सतिंदर सरताज भाजी का गाना जड़ा है मैं जरूर लगा देना। ठीक है जी, तो किड़ा लाइए, वीरवार का नहीं, कोई नवा जहा लाने दिल गाँव का फिरदा रंग मोए पुराना। ठीक है, शायर मूवी का गाना है मोए पुराना, वह मैं जरूर सुना देना। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के मैसेज भेजन के लिए। अगला मैसेज है जी गांव लोहगढ़ ठाकुरां वाला जिला फिरोजपुर पंजाब तो स्वरण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, पोतरे गुरनूर सिंह ते शुभदीप सिंह, फिल्म कभी कभी गीत के बोल तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, क्या बात है। ठीक है जी, अगला मैसेज जड़ा है सर तक पहुँचा, लिखे सत श्री अकाल, फिल्म ठोकर आवाज़ मुकेश, गीत के बोल मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में। मैसेज भेजा गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा तो राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, धन्यवाद। अगला मैसेज है जी ठोकर पे है सारा जमाना, जो बन जाए मेरा निशाना, मुश्किल है उसका बच पाना, क्योंकि सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। लो जी, ज़्यादा समय नहीं लगाते, प्रोग्राम का पहला गीत सतिंदर सरताज भाजी होना की आवाज़ के रेडियो सैट पर

खाना, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये गाना हमारे बचपन के एक एक एक बातें बतला देगा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। जी ज़रूर, इस गाने को मैं ज़रूर प्ले करूँगा। चेते करा देना, मेरे को याद करा देना 11:40 के आसपास फिर से। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दत्ता सिंह शेखावत, संगीता कवर तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, फिल्म अनजाना का कोई भी सुना दीजिए। ठीक है जी, अगला मैसेज है मोहित सर, सत श्रीकाल। हिर जसवीर सिंह दोहरा अडमोर अडमोर, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, सिंगर मोहम्मद अजीज़, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, जसवीर सिंह दोहरा। ठीक है जी, फिलहाल जिहड़ा मैं गाना लभ्या सीगा कि हवा के साथ सा, दोस्तों आपकी भी फरमाइश पूरी होगी। 9855101027 पर भेजे मैसेज।

ओ साथी चल, मैसेज भेज प्रोग्राम में। ओके, ठीक है जी। मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है। ये सर ने ना बड़ा ज़्यादा और ये बड़ी चिरों बाद कुछ ऐसी रिक्वेस्टेड ही आई है, तो मुझे लगता है ये दुनिया में कितना गम है ये हमें सुनाना ही पड़ेगा। अगर मिल गया, दुनिया में कितना गम है मेरा दर। मिल गया गाना जनाब, आपको मैं नाराज नहीं कर सकता जसवीर सिंह जी, आपकी फरमाइश जो है वो पूरी होगी। अगला मैसेज है फिल्म उलझन, सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब, गीत आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। सत श्रीकाल दिल जाता है मोहित रुबल जी, परविंदर सरा, गुनतास, रसनदीप, मनिंदर सरा, पिंड मोरजन, सिखा, हनुमानगढ़, फिल्म परवरिश, गीते बोल, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। ठीक है जी, फिलहाल असी प्रोग्राम दे विच अगे वधदे हां ते जिहड़ा गीत असी हुण आ चुके हैं इस नूं असी इंजॉय करदे हां। ਓ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ 'ਤੇ।

जी दिल का आलम, चलो सारा नहीं बताना, बस इतना ही बता दो भाई साहब या बहन जी, कौन सा गाना सुनना चाहे हो बे। ओ भी रह गए 7-8 फरमाइशा, फटाफट करो पूरियां। अगला मैसेज, नमस्कार नोहर राजस्थान से, नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, आपकी प्यारी प्यारी खूबसूरत पेशकश। फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, प्यार दर नहीं चकना ओ मखना। अरे यार बड़े चिरों बाद ये फरमाइश आई है। प्यार दर नहीं हो चकना ओए मखना, ओए मखना टैने। ओके बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ मखना। ओके जी, थैंक यू जी, फरमाइश भेजी है हमें, हमें हमें भेजी है। ओके नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार, राजस्थान से। ठीक है जी, अगला मैसेज, नमस्ते सर जी, मैं संदीप धालीवाल जंदर से, सोंग ओ सजनी रे। फिल्म मेला बोल, गौरी के हाथ में चांदी का चलाओ, तने को दिल्ली से, कमला रानी, भोजराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज, एनी सॉन्ग, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टेलू नायक, कैथल हरियाणा से, मधु नायक। ओके जी, अगला मैसेज, सुखदेव सिंह जी, क्या बात है मोहित रुबल जी, धन से दिल से धन्यवाद। सुखदेव सिंह, नरेंद्र खोस, सनी मनी काका, बिट्टू लाटी, मोहन मास्टर, जनेंद्र त्रिंदर तो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर वैसे साडा ना भी बोल दियो जी, गीत कोई भी होवे। मैसेज लिखा है, गायिका कमलजीत नीरू दा गीत रूड़ा मंडी जावे सुना दियो जी, पिंड बड़िंगखेड़ा, जिला श्री मुक्तसर साहब तो, भोला सिंह सिद्धू, लाडी धालीवाल जिंदर तो, मास्टर मोहन लाल, शौकी अरविंद कुमार। ठीक जी, नाम थोड़ा ले लिया जी, हुण आपां सुणदे हां। ओए मखणा, ओए मखणा, जनाब 15 मिनट रह गए ने, मैसेज मैं सारी रीड कर देते ने, फटाफट होर भी मैसेज जिहड़े ने भेजो, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹਜੇ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, 9855101027, 9855101027। ਹੇ

चुरा के मुट्ठी में दिल को छुपाए बैठे हैं, चुरा के मुट्ठी में दिल को छुपाए बैठे हैं, बहाना ये है कि मेहंदी लगाए बैठे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। रात 10 हो चुकी ने एंड एफएम रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जी शामे गजल। स्वाइती महफिल दे विच मैं थोड़ा दोस्त मोहित रुबल इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सो तुसीं भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो, जेकर तुसीं भी लिखण दे शौकीन हो, तुसीं सानूं साडे व्हाट्सएप ते मैसेज भेज सकते हो शायरी नज़म गज़ल।

जो चुपके से आए बैठे हैं, लाख फितरे उठाए बैठे हैं। वो नहीं है तो दर्द को उनके, वो नहीं है तो दर्द को उनके सीने से हम लगाए बैठे हैं। ये भी कुछ जी में आ गई हो गई, ये भी कुछ जी में आ गई हो गई, क्या वो मेरे बिठाए बैठे हैं। कि रंग जमता है या ना आने का, रंग जमता है या ना आने का, यानी मेहंदी लगाए बैठे हैं। ये खूबसूरत जो गजल मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लिखी है मीर मेहंदी महजरू जी ने। सो जी आओ प्रोग्राम दे विच एक पहली पेशकश जिहड़ी है असीं इंजॉय करते हैं।

इस तरह याद आने से क्या फायदा, इस तरह याद आने से क्या फायदा, मुफ्त एहसान जताने से क्या फायदा। जिस जगह दिल ही झुकता नहीं आपका, जिस जगह दिल ही झुकता नहीं आपका, उस जगह सिर झुकाने से क्या फायदा। कि खत्म कुछ दम में हो जाएगी रोशनी, खत्म कुछ दम में हो जाएगी रोशनी, शमा की लो बढ़ाने से क्या फायदा। कि अपने दुश्मन से वाकिफ तो हैं हम, मगर अपने दुश्मन से वाकिफ तो हैं हम, मगर नाम उसका बताने से क्या फायदा। खुल के हसीए तबाही पे मेरी हजूर, खुल के हसीए तबाही पे मेरी हजूर, जहरे लब मुस्कुराने से क्या फायदा।

कि अपने दिल से मैं करता हूँ अक्सर सवाल, अपने दिल से मैं करता हूँ अक्सर सवाल, उनकी महफिल में जाने से क्या फायदा। और उभरेंगे नक्शे कदम आपके, और उभरेंगे नक्शे कदम आपके, मेरी तुर्बत मिटाने से क्या फायदा। कि नीची नजरें उठाते तो एक बात थी, नीची नजरें उठाते तो एक बात थी, जाम आगे बढ़ाने से क्या फायदा। जिनको आता था वो तो ना आए सैयद, जिनको आता था वो तो ना आए सईद, मौसमे गुल के आने से क्या फायदा। बहुत ही खूबसूरत गजल जो है सईद शहीदी जी की लिखी हुई, और सच में मुझे ही पढ़ने का बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसको काफ़ी एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम तुसी

बहुत ही खूबसूरत गज़ल जो है सईद शहीदी जी की लिखी हुई, और सच में मुझे ही पढ़ने का बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसको काफ़ी इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो जी शाम ए गज़ल FM रेनबो यानी कि 102.7 MHz।

102 शरसत मेगाहर्ट्ज से यानी कि एफएम रेनबो से तुसी एंजॉय कर रहे हो प्यारे प्यारे नगमे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है दे विच इस प्रोग्राम नू एंजॉय कर रहे हो अपने दोस्त मोहित रूपल दे नाल।